0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: रब्बना वअदखिलहुम जन्नात अदन लती वअदतहुम वमन

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये न सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 24/7 365. 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
3: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
4: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Hamari purani car to bilkul theek chal rahi hai.
2: Theek to hai, lekin special nahi.
1: Matlab?
2: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
1: Special to lag rahi hai.
2: Aur price sirf 64,49,000.
1: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: This program is brought to you by
5: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
7: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
8: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे।

0: ऑलराइट, बच्चा पार्टी कैसी है आज? और हम बच्चों के लिए प्ले करते हैं पक्के दोस्त के ट्रैक, और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, क्या आप ज्यादा मजाक वाले हैं या सीरियस हैं। और पक्के दोस्त के अंदर एक कैरेक्टर है तुफैल जो बहुत मजे का है, एंड ही हैज सच अ क्यूट क्यूट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आइए सुनते हैं तुफैल का ये ट्रैक।
1: निराल, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं।
2: क्यों?
1: आज टेस्ट में तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। मैंने कितनी बार चुपके चुपके इशारे किए कि मुझे अपनी कॉपी दिखा दो, मगर तुमने नहीं दिखाई।
2: तो फैल, ये चीटिंग होती है। हम टेस्ट में एक दूसरे का काम नहीं देख सकते।
1: अगर मैं चुपके से देख रहा हूँ तो चीटिंग है, मगर अगर तुम अपने दिल से अपनी कॉपी दिखा रही हो, वो मदद करना है। अल्लाह मियाँ को पसंद है वो लोग जो एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार था, मैंने अपनी कॉपी बिल्कुल नहीं छुपाई।
2: तो फैल, तुम्हारी कॉपी में कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल खाली थी।
1: खाली नहीं थी, हर सवाल का जवाब लिखा था। प्लीज गूगल इट।
2: तू फेल हो जाएगा, तुम्हें टेस्ट में बड़ा सा अंडा मिलेगा।
1: अल्लाह करे दो दो मिले।
2: क्यों?
1: ताकि मैं उसका ऑमलेट बना के खा लूं, मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है।
2: पक्के दोस्त।
3: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
7: ٹھیک تو ہے، لیکن اسپیشل نہیں۔
6: مطلب؟
7: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، Alloy rims or sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपका कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हिस्से मजा अच्छा है या बस नॉर्मल है, और लाइफ गुजारने के लिए और जिंदगी को झेलने के लिए कभी कभी स्पेशली इन दिस कंट्री यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, हंसना पड़ता है, अपने आप पे हंसना पड़ता है, और अपने आप पे हंसना आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि आप ना आपको सीरियसली लेंगे वो भी लोगों के सामने तो ये एक बड़ी बेवकूफी है। सीरियस लेने से कोई फायदा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके गोल्स हैं, आपको बहुत अचीव करना है, आपको बहुत पैसे कमाने हैं, अपने खानदान वालों से आगे निकलना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आप सीरियस चेहरा बना के करें। आप मुस्कुरा के भी कर सकते हैं वो सारे गोल्स अचीव, और जब आपके गोल्स अचीव हो जाएं तो फिर आप खुशी खुशी में लोगों के साथ अपना दौलत, अपनी चीजें, कामयाबी शेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना ना लाइफ के अंदर, ये मुझे लगता है मेरी अपनी लर्निंग है, हो सकता है आपके डिफरेंट हो, तब मजा नहीं आता उसके अंदर। यू हैव टू बी लिटिल बिट लाइट एंड लिटिल बिट नॉन सीरियस, और खैर मेरा तो शुक्र काम ही है ऐसा जिससे मुझे ना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ काम करते बहुत सीरियस होने की जरूरत है। लेकिन आप बताएं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, और सेंस ऑफ ह्यूमर का अच्छा होना कितना जरूरी है आपको लगता है। हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे। सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा भी हो, उसका ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इसीलिए दोस्तों हम चलते हैं हेल्थ अपडेट की तरफ।
1: Update is brought to you by FM 100 Pakistan.
0: हाँ जी, तो सुबह सुबह मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजों के फायदे हैं और कुछ चीजों के नुकसानात हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर आपको पास कोई टाइम नहीं है नाश्ता करने का, जो अक्सर नहीं होता, और तो फिर झगड़े भी हो रहे होते हैं इस बात पे, और मियां बीवी दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते कि यार वो सोचा तुम कभी तो टाइम पे मुझे नाश्ता दे दिया करो, और बीवी दिल में सोच रही होती कभी तो तुम खुद बना लिया करो, और ये क्या क्या करूं मैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी सही रखें और खुद ही खिला लें अपने आप को, और क्योंकि खाली पेट ऑफिस जाना इट्स वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन अराउंड यू एज वेल, राइट। लेकिन एक फ्रूट अगर आप खा लेते हैं और तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए जो है आपकी जो आपका गुस्सा है, आपकी इरिटेशन है, तो वो थोड़ी बेटर हो जाती है। तो इट्स गुड, आपको क्विक एनर्जी मिलती है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है, और अगर वाटर रिच फ्रूट्स हैं तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा लेकिन हाँ, जिनको डायबिटीज है या जो और बीमारियां हैं वो अवॉइड करें कि एकदम से आप फ्रूट ना खाएं, क्योंकि शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ फ्रूट हैं जो आप आराम से खा सकते हैं खाली पेट, और लेकिन कुछ फ्रूट हैं जिसमें आप बेरीज हैं किसी किस्म की लेकिन सुबह सुबह जो है वो आप एप्पल खा सकते हैं, एप्पल इज गुड, और मैं तो भी डेट्स खा सकते हैं, खजूरें बड़ी अच्छी होती हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देती हैं, राइट। लेकिन तो ये जरूरी है कि आप सुबह सुबह फ्रूट खाएं। फ्रूट एक अल्लाह की नेमत है, और पहले बचपन में हम फ्रूट को इतना इग्नोर करते, फ्रूट खराब हो जाते थे, लेकिन हमें कहते हैं छोड़ा यार फ्रूट कौन खाता है, चॉकलेट्स खाओ, कैंडीज खाओ। और लेकिन बच्चे अगर आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि फ्रूट अल्लाह की एक बड़ी बड़ी नेमत है, क्योंकि आपके अंदर वो इतनी अच्छी एनर्जी, और आपके कैलोरीज कम बढ़ती हैं, और आपको एनर्जी अच्छी मिलती है, और अल्लाह ताला ने इतने अच्छे जायके, इतनी अच्छी वैरायटी बनाई हुई है फ्रूट की, खासतौर पर ग्रेप्स, पीचेस। ये अलग बात है कि कराची पहुंचते पहुंचते फ्रूट की क्वालिटी काफी वो होती है, अगर आप उधर सोर्स के करीब हैं और तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको फ्रूट मिलते हैं। जब भी आपको मौका मिले डेली बेसिस पे आपने कोई ना कोई फ्रूट जरूर खाना है, और उसके लिए लड़ाई करनी है। सो फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, और अगर आप जैसे अगर मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तो बुफे आप जाते हैं ब्रेकफास्ट बुफे, विच इज एब्सोल्युटली डिवाइन। द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज यू गेट टू स्टे इन नाइस होटल्स, उनका नाश्ता होता है, और तो वहां पे अगर फॉरेनर्स होते हैं तो आप हमारे यहाँ वाले तो है ना, वो तो जी पूरियां लाओ, तो हलवा लाओ, तो पता नहीं क्या क्या लाओ, इतना हैवी खाना उसको देखकर ही कुछ हो रहा होता है कि ये नाश्ता है। लेकिन स्पेशली इन पंजाब, जब आप फॉरेनर्स को देख रहे होते हैं कि वो क्या खा रहे हैं नाश्ते में, तो वो लोग दे आर क्रेजी अबाउट फ्रूट, वो इतना सारा फ्रूट खा रहे होते हैं कि दूसरों के लिए नहीं छोड़े होते, वो उनको पता है कि यार फ्रूट के अंदर कितनी एनर्जी और कितना हेल्दी है। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि आप सब फ्रूट कोई ना कोई फ्रूट आपकी कोई हर मील के अंदर कोई ना कोई फ्रूट हो, और उसके बाद अगर कहीं वैसे ही आपको फ्रूट मिल जाए तो वैसे ही खा लें। और इवन केलों को भी इग्नोर ना करो, अक्सर केलों को इग्नोर कर देते हैं कि यार छोड़ो केला कोई खाने की चीज है, लेकिन यकीन करें کبھی کبھی انسٹنٹ انرجی کے لیے فروٹ از ویری ہیلدی. اور بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں فروٹ کھانے کی, مجھے نہیں لگتا بچوں کو اتنی عادت ہے فروٹ کھانے کی, تو یہ ہونی چاہیے ڈیلی بیسس پہ, اٹس امپورٹنٹ. لوگ وائٹمنز دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, کہیں کہیں بچوں میں کافی کمیاں ہیں, لیکن فروٹ بھی ڈیلی بیسس پہ, فروٹ, دودھ, تھوڑے سے ڈرائی فروٹ, والنٹ, بادام, یہ سورا بچوں کے منہ میں آئی تھنک اب ڈالتے رہنا چاہیے. اور رائٹ, اور ہمارا آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سینس آف ہیومر ہے, کہ آپ کا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے کہ نہیں. ایکچولی میں اتنے عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ آج کل میں ٹائم گزار رہی ہوں کہ میرا خود ہی مجھے اپنے آپ پہ شک ہونے لگا ہے کہ میرا سینس آف ہیومر بچا بھی ہے باقی, کہ پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے. تو اسی لیے میں اپنے آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ میرا سینس آف ہیومر کیسا ہے, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. اگر سینس آف ہیومر چلا گیا نا آپ کی لائف سے, تو پھر آپ بھی کوئی زندگی کے اندر آپ کی کوئی بات ہی نہیں رہنی. اور خیر, اور ہمارے پاس میسج ہے مجیب رحمان مرفانی اور میری بیٹے ڈاکٹر منیب رحمان مرفانی, ڈاکٹر ابو حریرہ مرفانی, بی بی غلام زہرا مرفانی. تو مرفانی فیملی کا میرے پاس میسج آیا ہے, ہیلو مرفانی فیملی, ہاؤ آر یو, وش یو اے ویری ہیپی ڈے. اور رائٹ, سو آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کیا سین ہے, آپ جو ہیں وہ مطلب ایک سینس آف ہیومر ہے آپ کا, یا پھر آپ بالکل ہی کوئی دکھی انسان ہے. صبح صبح تو ویسے ہی بندہ جو ہے نا ویسے ہی دکھی انسان ہو جاتا ہے کبھی کبھی, رائٹ. اور ہم آپ کے لیے یہ مکھن والا گانا لگا رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.

0: ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अर्चना समिया। और आज हमारा मौजूद गुफ्तगू ये है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। आपके मैसेजेस आ गए, नजीर खोसो रहीम बलोच का भी मैसेज मेरे पास आ गया है। और आज प्लीज, जो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस और दुखी इंसान है तो आज आपका कोई सीन नहीं है मेरे शो में। हम यहाँ पे बात करें हैप्पी लोगों से जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और वो दूसरों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब दूसरों की भी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाती है अगर आप हंसते मुस्कुराते हैं। और कभी कभी तो खैर हर वक्त ही कोई सीरियस ही हो जाता है, मतलब हर वक्त कोई हंसता मुस्कुराता नहीं रहता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम राइट। तो हम यहाँ मैसेज करें, एनजीक का मैसेज आ गया है। एनजीक करें, सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आया मुझे, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं मगर सेंस ऑफ हैमर अच्छा है। और राइट, और आप लोगों के मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है @RJSameha और फेसबुक भी है, तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और शो ऑफ कर सकते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। और राइट, और हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाब सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाब सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत जवाबित लागू हैं।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
10: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
12: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
13: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
12: مطلب؟
13: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
12: Special to lag rahi hai.
13: Aur price sirf 64,49,000.
12: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
14: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
15: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
1: This program is brought to you by
10: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
16: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
3: اینڈ سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
17: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 365.

वेलकम बैक आप कैसे? अच्छा जी, वेलकम बैक जी। और थोड़ा सा आज ओके, तो आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और क्या कहते हैं, अच्छा उस्मान हफीज, थैंक यू सो मच, आपको मेरी तस्वीर अच्छी लगी कि मैं वो ट्रक में जा रही हूँ। मेरा बड़ा शौक है कि मैं हर व्हीकल चला लूँ कम से कम जिंदगी के अंदर, और चला ना सकूँ तो कम से कम तस्वीर तो बंदा खिंचा ही सकता है। तो मेरा बड़ा शौक है ये कि मैंने गधा गाड़ी में भी पिक्चर खिंचवाई, सी बात नहीं, गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, और एक दफा कहीं पे क्रेन, एक सब जियो टीवी के सामने कोई काम हो रहा था, क्रेन टीवी पे थी, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि मुझे यहाँ जाना है। वो भी बड़ा कूल है, वो भी कह रहे चलो ठीक है तुम चली जाओ ऊपर। तो ये हम मतलब क्या कहते हैं, ऐसी मैं चीजें कर ही होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, और कुछ ब्रेक्स आपको मिलनी चाहिए, और इसीलिए मैं किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक, मैं वहां काम नहीं कर सकती क्योंकि वहां सब लोग बहुत सीरियस होते हैं, पता नहीं क्यों सीरियस होते हैं। लिटरली मैं जब मैं बैंक में एंटर होती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो एवरीवन, सब मुझे देख रहे होते हैं, मैं कह यार मतलब सीरियस होने की क्या बात है, मतलब क्या चीज सीरियस, ये सब मतलब बंदा एकदम मरी जाएगा, और वो वाली चीज काफी सीरियस होती है। तो इससे पहले सीरियस होने की क्या जरूरत है आपको? बल्कि अब जो कैंसर के भी मरीज हैं या बहुत बड़ी बीमारियां भी होती हैं, उनको भी ऐसी थेरेपीज दी जाती हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचें, डिस्ट्रैक्ट हों, और जितने हैप्पी आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स और केमिकल्स पैदा होते हैं उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और इकबाल हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा ब्लू मग भेजा, वेरी गुड, काश कि असली में भी आ जाए मेरे पास ये भी। और याया हमीद करें जी, बिल्कुल विदाउट अ सेंस ऑफ ह्यूमर यू आर नॉट अ कंप्लीट पर्सन, इट्स अ कलर ऑफ लाइफ, पीपल एंजॉय योर कंपनी इफ यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता ना अच्छा, वो बर्दाश्त भी नहीं होते, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि बस वो कहीं चले जाए। और सोबतपुर बलूचिस्तान से हमारे पास मैसेज आया है कि इतना तवील मैसेज, हिस्से मजा पे, हिस्से मजा अच्छा होना कोई गुनाह तो नहीं, ये नेमत है, जिंदगी में टेंशन बहुत है, अगर आप दो मिनट हंसा दें तो लोग आपको सालों याद रखते हैं। और हिस्से मजा का जिंदगी, अच्छा हिस्से मजा का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त जोकर बन जाएं, अच्छा हिस्से मजा वो है जो माहौल हल्का कर दे, किसी का दिल ना दुखाए, मैं समझता हूँ जिसकी बात को में मोड़ना आना चाहिए, असल में मजा आया है। हाँ मजाक के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा और सोच खुली होनी चाहिए। कुछ लोग तंज को मजाक समझ लेते हैं, नहीं भाई, तंज से जख्म लगता है, हंसी नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर आप मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराकर बात कर लें तो समझो आपका हिस्से मजाक टॉप है। वेरी गुड भैया, आपका मैसेज भी एकदम टॉप टू टॉप है। और लोगों को हंसना नहीं आता, एक सीरियस सिचुएशन को लाइक नहीं करना आता, और जैसे कि बॉस से डांट पीटी आते कुछ, अच्छा कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता था, मैंने देखा बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस ये होता था, अगर मुझे कोई टीचर ने डांट दिया तो मैंने तो पूरा हफ्ता इस बात का सोग मना रही होती, हाय टीचर ने मुझसे ऐसे क्यों बात की है। और इसी तरह से जो है ना, लड़के कहते अच्छा डांट दिया, उसके बाद बाहर आके हंस रहे होते थे, बल्कि पिटाई हो रही हो बाहर आके हंस रहे होते थे। और लेकिन इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो फिर बॉस डांट रहे हैं, तो बॉस उस वक्त आप बड़े सीरियस आप सुन रहे हैं, और लड़कियां के मुझे बॉस ने ऐसे बात कर दिया, मैं तो रिजाइन कर रही हूं। और बॉसेस को भी समझना चाहिए कि लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं होता, वो सीरियस ले लेती हैं चीजों को, तो उनसे और लड़कों से डिफरेंट तरीके से बात करनी चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं समझते और एक ही तरीके से सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, लड़कियों और लड़कियों से, तो आपको मैं क्या बोल सकती हूँ, आप खुद ही अपने आप को कुछ कह दें। खैर, लेकिन लड़कियां सीरियस ले लेती हैं, और लड़के कहते हैं छोड़ा यार, तब बीच में पीछे आके सही की गालियां देते, मैं छोड़ा यार चलो बाहर सिगरेट पीते हैं खाते हैं कुछ, तो यू नो मैंने लड़कों को ऐसी सीरियस सिचुएशन के अंदर ना इतना हंसते और चिल्ड आउट देखा है ना, कि आई यूज टू से लाइक आई विश आई हैड दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, राइट। और तो खैर, आप लोग मजरूर से मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी, आपको हमने बड़ा मिस किया है, क्योंकि सब खूबसूरत प्यारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज के टॉपिक के हवाले से यही कहूंगा कि मेरा हिस्से मजा अच्छा है, दुआ अल्लाह ताला मौला आप सब खूबसूरत प्यारे दोस्तों को हमेशा खुश खुर्रम व आबाद रखे। दुआ का तलबगार एमएस मलिक, ये चीज मैं इतना मिस करती थी ना आपके मैसेजेस की। आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, अब आप हमारे साथ आ गए, हमारे शो का हिस्सा बन गए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और एनजी करें, मैं एक्सप्रेशन लेस पर्सन, मोस्टली माय रिएक्शन हिट्स अदर्स लाइक अ हैमर, सो कैन टेल मी विच वन। अच्छा क्या हो गया है एआई पिक? मैं आपको बता रही हूँ कि एआई पिक वो नहीं है, आई हेट एआई पिक। कुछ लोग कुछ पिक्स में आपको जरूरत पड़ती है कि, तो ये वाली पिक तो मेरी क्लासिक पिक है, मैं क्यों उसमें एआई जो है लगाऊंगी। और अगर मैंने एआई लगाना होता उस पिक्चर के अंदर तो मैं फिर वो कोई ट्रक को जरा हसीन बना देती।
لیکن خیر اٹ از ناٹ اے آئی, اٹ از ریئل ریئل پکچر, ویری ریئل. اور خیر اب تو لوگ سینس آف ہیومر اب لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی تصویر بنا لیتے ہیں, شاہ رخ خان یا اس کے ساتھ بھی تصویر بنا لی کہ یہ بڑا سینس, وہ بھائی سب کو پتا ہے کہ اے آئی ایڈیٹڈ ہے. اور مطلب لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ تصویر کھچوا کے خوش ہوں, مطلب آپ کے دوسروں کے ساتھ فیک پکچرز بنا کے آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آپ کول بن گئے. تصویریں لگا کر کوئی بندہ کول نہیں بنتا, دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے, اور دل میں جگہ بنانا نا آسان کام نہیں ہے. لیکن شروعات کی جاتی ہے اچھے خوش مزاج, مطلب یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر, یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے. خوبصورت ہوں یا نہ ہوں, خوش مزاج ضرور ہوں. اور خیر ابھی ہم آپ کے لیے ایک اچھے مزاج والا گانا پلے کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: This program is brought to you by
5: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL
6: and Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा
7: and सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा।
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
9: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
12: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखे।
13: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
14: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100।
16: Like us on facebook.com/FM247365.
17: FM247365.
18: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
19: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
18: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता.
20: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
21: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
18: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
20: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
21: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
20: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
18: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
21: और इस वजन की असल हकीकत को समझें.
18: आइए वेट से आगे का सोचें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

वेलकम बैक, आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मेरे पास है आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। FM 100 कराची हैदराबाद के अलावा सखल लारकाना खैरपुर में एरिया में होना जरूरत है। अच्छा मुझे वैसे हैदराबाद तो पहुंच जाते हैं हम लोग, बिल्कुल जरूरत है बिल्कुल, लेकिन आप हमें नेट पे भी सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बुरहानुद्दीन कह रहे हैं कराची, समिया जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। समिया जी आपका क्या हाल है, तबीयत कैसी है, घर फैमिली सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सब ठीक है हैं, आपके घर में सब ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है। और आप लोगों के और भी पैगामात मेरे पास है, नसरीन पटेल जी का भी मैसेज आ गया है। नसरीन पटेल जी आप कैसी हैं, और इसके अलावा हमारे पास और भी मैसेजेस हैं। हाँ जी वास ने कहा को समझ जी मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरे जानने वाले कहते हैं कम बोलता हूँ लेकिन अच्छा ये ठीक है, अच्छा सही है। और आमिर जफर सिद्दीकी कह रहे नाइस टॉपिक, आमिर जफर सिद्दीकी आप भी बताएं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, और अगर आप किसी की तारीफ भी करना चाहें जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्त का, तो आप जरूर जरूर हमें बताएं, हो सकता है कि इसी बहाने मतलब क्या कहते हैं वो मशहूर हो जाए सेंस ऑफ ह्यूमर वाले। और वाकई में खुश मिजाज लोग हर एक को पसंद आते हैं, हर एक उनकी कंपनी सीक आउट कर रहा होता है। और मुझे जो लोग भी हंसाते हैं इवन इन टेलीविजन, मैं दिल से दुआ करती हूँ अभी भी मोइन अख्तर साहब के लिए, और मैं दुआ करती हूँ उमर शरीफ के लिए, क्योंकि इतने उन्होंने जो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका था, जो टाइमिंग्स कॉमेडी टाइमिंग्स उनकी थी, और जो हंसी अगर आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही तो आप एक काम करें कि आप जो है ना वो मतलब उनके पुराने ड्रामे देखना शुरू कर दें, उमर शरीफ के बकरा किस्तों पे पार्ट 1 पार्ट 2, और गारंटीड है कि यू आर गोइंग टू लाफ योर हेड ऑफ बिकॉज इट्स जस्ट सो फनी। और किसी तरीके से वो स्पेशली कराची के लोगों के डिफेंस के लोगों का मजाक उड़ा रहे होते थे, खुद ही हंस रहे होते थे अपने आप पे भी, और मतलब माशरे की जितनी बुराइयां हैं उनको बहुत मजेदार तरीके से वो बात करते थे और आपको हंसी आ जाती थी, सीरियस से सीरियस इंसान को हंसी आ जाती थी। तो ऐसे लोग जो आपको हंसाएं बड़े प्यारे होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। और राइट, और आप लोगों को भी मेरी कदर करनी चाहिए और मुझे मैसेज करना चाहिए। और आज हम इस बारे में बात करें कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamiha इंस्टाग्राम पे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा और डांस करने, दोस्तों आप भी कर लें।

0: National Bank, easy wala bank.
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार. जहां ख्वाब वहाँ HBL
5: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा
5: एंड
7: सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा.
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

जी आप हमारे पास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. आज हम बात कर रहे हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है. वैसे अमूमन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता, खासतौर पर अगर आप बहुत ज्यादा हसास इदारे में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको आपके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने शायद हंसना भी नहीं है. मुझे तो कराची के अंदर हर जगह ही ऐसा कि आपने जी हंसना आपको जो है ना बिल्कुल मना ही है, खबरदार जो आप हंसे हैं. और हालांकि आपको पता है मुस्कुराने से कितनी चीजें बेहतर हो जाती हैं. और बॉसेस को भी ऐसे के मना है कि अगर आपने जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं मुस्कुरा लिया गलती से. अच्छा इसमें क्या है, अच्छा मुस्कुरा के बात करी तो एम्प्लॉय सर पर चढ़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है भाई. मुस्कुराना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता है, अच्छा माहौल रहता है, उसमें लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. ये बात मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं है. और अब मैं थोड़ा सा शो ऑफ करूँ, और आपको पता है जब मैं लंदन गई थी तो लंदन तो मुझे जरा नहीं अच्छा लगा. अब मैं वहां पे मतलब घूम रही हूँ ट्रेन में और मैं वहां देख रही हूँ ऑल एक्साइटेड स्टूडेंट, और वहां मैंने कहा

0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। जब बात करें कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा सीरियस लोग जो है ना वो बस बर्दाश्त के काबिल नहीं होते, वो भले कितने भी कामयाब हो जाएं लाइफ में। उनकी फिलॉसफी है कि लाइफ में सीरियस होना चाहिए, सीरियस होना मांगता है, लेकिन ज्यादा सीरियस लोग किसी को पसंद ही नहीं आते। सोचें कि आप बहुत अमीर हो गए हैं लेकिन कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, आपके मरने पे भी कोई लोग करे खुशी, अच्छा गया सीरियस आदमी था, बड़ा यार अभी हंसता ही नहीं था, तो ऐसे आपकी जिंदगी का क्या फायदा है। लेकिन खुश मिजाज लोग, खुश इखलाक लोग वो होते हैं कि दूर दूर से लोग उनकी अगर वो चले जाएं दुनिया से तो लोग आते हैं कहते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा था यार, दो पल साथ बैठता था मगर स्माइल करा देता था। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जब वो बंदा चला जाता है ना दुनिया से तो उसका सिर्फ इखलाक याद रहता है कि वो आपके साथ कैसा था। और तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप भले कितने भी अमीर हो गए मगर आपके मरने पे कितने लोग आएंगे अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है। तो ये सवाल मेरे बॉसेस के साथ भी, अच्छा कभी कभी आप जब जूनियर होते हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, न जाने किसी ने उनको क्या पढ़ा दिया है कि जैसे जैसे आपकी पोजिशन अच्छी हो ऊंची होगी तो आप सिर्फ दो तीन लोगों से मुस्कुरा के बात करेंगे ऑफिस में, दैट्स इट। इसके अलावा मना है कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है ना मुस्कुरा के बात कर लीजिए, सर पे चढ़ जाएगा सर पे। ओ भाई हर कोई नहीं सर पे चढ़ता, और आजकल ना ये चीजें नहीं चलती, इवन बच्चे भी तंग आ जाते हैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने जा भाई अब्बा तो हर वक्त डांटते रहते हैं। आजकल तो अब्बा भी चेंज हो गए हैं, अब्बा भी कूल अब्बा हो गए हैं आजकल के। खैर हम चलते हैं आप लोगों की मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। नसीरे मत करें, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, यहाँ के लोगों की हिस्से मिजाज बहुत अच्छी है और फैसलाबाद जुगते लगाने पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, और बड़े बड़े कॉमेडियन का ताल्लुक फैसलाबाद से। मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ फैसलाबाद के लोगों को क्योंकि मैं वहां पर इवेंट होस्ट करती रही हूँ, और वहां पर मुझे इसलिए मजा आता है कि वहां कोई माइंड नहीं करता। अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं ना इवन विद ऑडियंस, और वो उनके लिए जरूरी है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं और जुगत पे जुगत हो, और बस वहां मुकाबला शुरू हो जाता है कि कौन आपसे ज्यादा मजाक उड़ाता है। अच्छा दैट इज सो ट्रू, सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद के वहां जुगतें बड़ी मजे की हैं। पंजाब में एयर ही खुश है, पंजाब के इशू अलग है, कराची के इशू अलग है, तो कराची वालों को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये लोग इतने सीरियस क्यों है। पंजाब में हर चीज खाने पर शुरू होती है, खाने पर खत्म होती है, कितनी भी गमगीन माहौल हो, टेंशन हो, नौकरी से निकल गए वो अलग बात है, लेकिन चलो रोटी छोटी खा लेते हैं यार। मतलब यहाँ पर तो पहले से ही खाना ही सबसे पहले छोड़ देंगे, नहीं यार मुझसे तो खाया नहीं जा रहा, वो रोटी पे ही उनका गम है, रोटी पे ही खुशी है, और तो मतलब उन वहाँ कुछ और ही डिफरेंट वाइब है। और फैसलाबाद वालों की तो बहुत ही कोई कमाल वाइब है, और राइट कराची के लोगों की डिफरेंट वाइब है। और हमारे पास एनजीक का भी मैसेज आए हुए हैं और आमिर भट्ट के भी मैसेज आए हुए हैं, और आमिर भट्ट साहब रुके एक मिनट। हाँ जी, तो आमिर भट्ट साहब आपके लिए मेरा एक मैसेज है कि पहले तो आप ये बताएं कि कितने दिनों के बाद आप आए हैं वापस, कहाँ गायब थे, कितना पैसा कमा लिया है सरसे के अंदर, और खुद ही अकेले अकेले पैसा कमाए जा रहे हैं, हमारे लिए कोई तोहफा शोफा नहीं, क्या बात है। खैर आई होप यू आर हैप्पी एंड इट्स अमेजिंग टू सी योर मैसेज आमिर भट्ट, खुश रहें और हमें ये भी बताएं कि आपका हिस्से मजा कैसा है। कह तो रहे कि बहुत अच्छा है, भाई प्रूफ तो होना चाहिए ना, हम कैसे मान लें कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, राइट। और फिलहाल हम आपके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर वाला एक गाना लगा रहे हैं जिसका नाम है पुरानी मेरी कार है, आइए सुनते हैं।
1: ये लो भाई, ये लो रखो और गाड़ी सही कराओ।

0: पुरानी मेरी कार है, चलना दुश्वार है और इसे देखना तो दूर की बात. तो ये होता है कि जब आप पुरानी गाड़ियां होती हैं, खैर पुरानी गाड़ियां तो अब तो कम ही हो गई हैं, लेकिन ये कि आपका कैसी भी गाड़ी हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए. टायर पंचर हो जाए तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, लेकिन खैर कराची के अंदर अगर असली में आपका टायर पंचर हो जाए या आपका ड्राइवर से ये गलती हो गई कि उसने स्पेयर टायर पीछे नहीं रखा, मालिक के अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता उस वक्त. और फिर टायर पंचर, वैसे आपको बात बताऊँ, बहुत बड़ी नेकी है किसी का रास्ते में मदद करना, खासतौर पर अगर कोई टायर पंचर हो जाए तो मदद करना चाहिए उसकी. और लड़कियों को तो बहुत आसानी है यहाँ पे, मुझे तो इतनी आसानी है, मैंने जिंदगी में आज तक पार्किंग की ही नहीं. तो मैं तो जब उतरती हूँ, मैं पार्किंग मुझसे होती भी नहीं है. एक दफा मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी पार्किंग की और मैं अपने आप को अपनी तारीफ करने जब मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रोड खड़ी हुई है. मतलब इट वॉज नॉट इवन फनी कि वो कितनी बुरी पार्किंग मैंने की है. तो उसके बाद मैंने कोई मुझसे ऐसे कहते यार आप कैसी गाड़ी चला रही, कैसी पार्किंग करी है, मैं तो गाड़ी की चाबी उसको हाँ बंदे को दे दी थी. वो बंदा इतनी परफेक्ट पार्किंग कर रहा होता था, मेरी और दोस्त उसके सारे खड़े हुए होकर देख रहे होते थे कि हाँ जी चल तुम कर लो पहले पार्किंग, बाद में हम चलेंगे. सो या तो खैर लड़कियों के लिए बड़ी आसानी है. टायर पंचर तो हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि बेटा तुम पाकिस्तान में हो, ये है ना हमारे सारे भाई, ये करेंगे ना टायर चेंज, किस लिए हैं इतने सारे भाई हमारे. तो सारी लड़कियों को बड़ी आसानियां हैं पाकिस्तान में रहने की. टायर पंचर कोई चेंज कर देता है, पार्किंग कोई आपको कर देता है, आप जरा सा रास्ता मांगे वो बेचारा वहीं खड़ा हो जाएगा, उसने नहीं जाना, आप बोले सर भाई जरा रास्ता, वो वहीं देगा. तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, फायदे पाकिस्तान में रहने के. खैर अगर आप भी कुछ ऐसे बातें और मजाक के मुतालिक कुछ गुफ्तगू हमसे करना चाहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, इसको उर्दू में कितना मुश्किल लगता है हिस्से मजाक, तो हमें आप मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. और एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर. और हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद.
1: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है. अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं. सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL. शराइतो जवाबित लागू हैं.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं. सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत ज़वाबित लागू हैं.
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं. सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत ज़वाबित लागू हैं.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज़ V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रूपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: This program is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL
9: and Phoenix laga aur bhul ja
10: and Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ja.
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
11: 365.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे सिमी। आज हम बात इस बारे में कर रहे हैं कि आपके पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होता, कुछ लोग कभी भी नहीं हंसते, वो रोजाना वही सीरियस मुंह लेकर आ जाते हैं ऑफिस और वही सीरियस मुंह लेकर वापस चले आते हैं अपने घर वालों के पास। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस आप आए बाहर आई, जहां वो जाते हैं हंसी मजाक रौनक लग जाती है। और कुछ लोग के अलग अलग रूप होते हैं, वो ऑफिस में तो बड़े सीरियस होते हैं और वैसे वो बहुत मतलब हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं और मुझे तो खैर बिल्कुल भी सीरियस रहना अच्छा नहीं लगता, ना मुझे सीरियस रहना अच्छा लगता है और ना ही मुझे सीरियस लोग पसंद है। मुझे लगता है कि यार लाइफ इज टू शॉर्ट। और अब आप देखें जितने लोगों ने मसले किए ना दुनिया के अंदर वो सीरियस लोग ही हैं। जैसे कि जिसने एटम बॉम्ब बनाया होगा वो भी सीरियस इंसान होगा, जिसने एटम बॉम्ब चलवाया होगा वो भी सीरियस इंसान होगा। सीरियस लोग ज्यादातर कुछ दुनिया को तकलीफ ही देते हैं, हंसते मुस्कुराते। आप एक किसान हो, आप मेरे लगता है किसान लोग बड़े मतलब अल्लाह का तोहफा है, खिदमत करते हैं दुनिया की, खाना खिलाते हैं, उनका खाना उगाते हैं। एक बंदा किसान है हंसते मुस्कुराते जा रहा है, क्या कहते हैं अपने काम पे, खेतों पे काम करता है, फसलें उगाता है, वापस आ जाता है अपने घर। वो उस अमीर कॉरपोरेट वर्ल्ड के शहंशाह सीरियस आदमी से बहुत अच्छा है जो अपने पैसों की खातिर अनहेल्दी चीजें लोगों को खिला रहा होता है और बस उसको पैसे कमाने होते हैं। तो ये मतलब भले उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो लेकिन दर्जात जो होते हैं ना, दर्जात का बड़ा फर्क होता है। और खुश मिजाजी खुश इखलाकी से ना जिंदगी गुजर जाती है। और सीरियस लोग भले कितने भी अमीर सही और लेकिन सीरियस है, नौकरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, डांट के बात करते हैं, हर वक्त सीरियस रहते हैं, आगे पीछे गार्ड्स घूम रहे हैं लेकिन पसंद कोई नहीं कर रहा। क्या फायदा ऐसी लाइफ का यार, तो हंसो मुस्कुराओ चिल करो। ओके, और हमें मैसेज करें। हमारे पास मुजीब है मानकर, प्राइवेट स्कूल में टीचर अब तरजीह नहीं दे रहे, फीस लंबा तालीम नहीं। ये तो वही पुरानी बात है, यहाँ पे तो ये तो बातें होती रहती हैं कि तालीम का, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है तो आज खुद ही कोई मेहनत करनी है। आप स्कूल्स पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो स्कूल वाले आपके बेटे को बहुत ही बाकमाल बाकिरदार अक्लमंद इंसान बना देंगे। पर जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं, मतलब पेरेंट्स भी, ट्यूटर्स भी, ट्यूशंस भी, हर कोई, और उन पर नजर रखा होता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके रिजल्ट्स पे, फिर कहीं जाके वो बच्चे आगे जाते हैं। यू कांट जस्ट डिपेंड ऑन स्कूल्स, पर कहीं कहीं पढ़ाई भी इज अ जोक, पढ़ाई तो यहाँ पे कहीं कहीं जोक ही है। और राइट, लेकिन हम आज टेंशन वाली कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि आप जो है वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आपका हिस्से मजाक कैसी है, कितना हंसते हैं कितना हंसाते हैं। तो आप हमें मैसेज करके बताएं, नहीं बताते तो भी बता दें, कोई मसला नहीं है। हर तरह के इंसान होते हैं, हो सकता है कि आप एक दुखी इंसान हो, मसला नहीं है यार। आई एम अ वेरी एक्सेप्टिंग पर्सन। हाँ, ज्यादा पसंद नहीं आते मुझे सीरियस लोग लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी एक्सेप्ट अपना दिल बड़ा करके ऐसे लोगों को भी हक देना चाहिए जीने का जो सीरियस है। तो हमें आप मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे, आजय समिया के इंस्टाग्राम पे। और अभी क्योंकि चुनिए जमशेद का गाना हमने नहीं लगाया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना लगाएं, तो आगे सुनते हैं उनकी आवाज में ये ट्रैक।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। और अब आज हमने बात की हिस्से मजाक की कि हिस्से मजाक जो है ना वो क्या कहते हैं बड़ी कोई कमाल चीज है। अगर आपके अंदर हिस्से मजाक नहीं है, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे हंसना नहीं आता, अगर आपको खुद पे हंसना नहीं आता तो आप क्यों हैं दुनिया के अंदर। मतलब आपके होने या ना होने से कोई फर्क फिर भी नहीं पड़ने वाला, मतलब आप लिटरली। और वो कहते हैं ना वो दादा अबू बड़े जो सख्त टाइप दादा अबू के थे, हाँ चले गए और मतलब बस इंतजार करते रहे कि जायदाद का पता चल जाए, हो सकता है कि जायदाद हमारे नाम हो जाए। वो इतने सड़े दादा अबू होते हैं, वो जायदाद भी नाम नहीं करते। तो आप ऐसे दादा अबू ना बने, आप खुश मिजाज बने और बच्चों के साथ दोस्ती का जो है ना वो एक रिश्ता रखें ताकि मरने के बाद भी वो आपको अच्छे लफ्जों में याद करें। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा जायदाद है, पैसा है, आपको पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है और एक्स्ट्रा भैंसे और बकरियां हैं तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। मैं हर चीज ले लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बकरी हो भैंस हो और मतलब महंगे तोहफे भी ले लेती हूँ। तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बड़ा अच्छा है तोहफे लेने के बारे में। कुछ भी हो एक्स्ट्रा हमसे रابطہ करें, हम मना नहीं करते किसी चीज को, हम कहते हैं आने दे है ना। और फिलहाल तो मुझे जाने दे, आपके लिए मैं छोड़े जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि आप अपना रोब डाल के मुझे इम्प्रेस कर लेंगे या मुझे डरा देंगे। आप तमाम लोगों के लिए है ये गाना, आई नहीं अपने प्यारे खूबसूरत लिसनर्स को आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: वाटिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर क्वेटा मा गोल्ड क्वाइन खटिया है बीबी जोया
1: आने तमाबे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम खटे सगो था बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ए ढेर सारा इनाम खटियो
0: गुजरल हफ्ते जे विनर जो नालो जानन लाए वाटिका शैम्पू जा सोशल मीडिया पेजेस विजिट करियो
2: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
3: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर क्विटर से जीती है बीबी जोया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरकीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें। جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 24/7/365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Follow us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फीन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फीन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फीन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फीन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और जी आप तो जानते हैं कि बाकायदगी से आगाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता, सबसे जरूरी होता है कि लोगों को थोड़ा एनर्जाइज किया जाए, और वो हम करते हैं एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो जी रिवायत हो गई है कायम, हमारा आपसे आज एक अदद सवाल भी है, और सवाल पर आज हम आपसे खूब सारी बातें करेंगे और आपकी राय को भी शामिल करेंगे। तो भाई आज हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिस पर आज गुफ्तगू होगी, और वो गुफ्तगू ये है कि आज का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन हमारी जिंदगी का बहुत से डिसीजन इस एक छोटी सी लाइन के गिर्द घूमती है, और वो छोटी सी लाइन ये है कि जी लोग क्या कहेंगे। नया करियर चूज करना हो, शादी का डिसीजन हो, या अपनी पसंद का ड्रेस पहनना हो, जॉब छोड़नी हो, या बिजनेस स्टार्ट करना हो, या बस अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी हो, कहीं ना कहीं हम रुक कर सोचते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, और इसी वजह से हम बहुत सारे फैसले जो हैं वो नहीं कर पाते। तो आज इसी मौजू पर होगी गुफ्तगू और आपकी भी राय को करेंगे शामिल। तरीकाकार क्या है प्रोग्राम का हिस्सा बनने का वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अदद ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
0: यस एवरीबॉडी, तो प्रोग्राम का तो बाकायदगी से आगाज हो ही चुका था। सवाल आज हम क्या कर रहे हैं इसके हवाले से भी थोड़ी सी आगाही आप लोगों तक फरहम की, लेकिन द मेन थिंग इज दैट कि किस तरह आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर स्टेटस हो चुका है अपडेट। तो लोग क्या कहेंगे, क्या आप भी ये बात सोचते हैं अपने हर डिसीजन को करने से पहले? इसी फिक्र में आप बहुत सारे फैसले जो आपको लगता है कि शायद आपके हक में ठीक होंगे लेकिन आप उन्हें भी खत्म कर देते हैं ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे कि ये लाइन आपकी जिंदगी में कितना मैटर करती है, 1% 2% या फिर नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना काम करते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है। आज इसमें हमने कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बड़ा मजा आता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक या कोई सवाल पूछती हूँ तो अपने लिसनर्स से उनकी राय जरूर लेती हूँ। और अब आपके पास राय देने के लिए दो दो ऑप्शंस ही मौजूद हैं कि आप या तो हमें 3636 पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी हमारे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं जिसे हम शामिल करेंगे। तो आज का हमारा सवाल ये है कि जी लोग क्या कहेंगे, क्या ये छोटी सी लाइन आपकी जिंदगी पर भी बड़ा असर डालती है और इसी वजह से आप बहुत सारे काम कर पाते हैं या नहीं, तो सोचें और हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं एक और ट्रैक की जानेब और फिर इस मौजू पर करेंगे आज खूब सारी बातें आपके साथ। तो एक ट्रैक को शामिल करते हैं फिर आते हैं वापस।

All right, जी, so we are back again with the track. तो भाई साथ साथ ट्रैक्स भी चल रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी आप लोगों के साथ जो है वो हमारा जारी है और ये जारी रहेगा क्योंकि हम और आप हैं दो बजे तक एक साथ. तो जाहिर है जी, जब हम लोग साथ हैं तो भाई बातें तो खूब सारी होंगी ही. और आज तो भाई हमारा एक अदद सवाल भी है और सवाल ये है कि जी लोग क्या कहेंगे. तो क्या ये लाइन आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालती है जिसकी वजह से आप कई फैसले जो हैं वो नहीं कर पाते. उसमें बहुत सारे डिसीजन होते हैं आपके आगे बढ़ने के, आपके करियर के, आपकी शादी के, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ना हर दफा हर मरतबा यही सोचकर आगे नहीं बढ़ पाते कि जी लोग क्या कहेंगे. और हम अपनी लाइफ को अपने स्टाइल में भी नहीं जीते बिकॉज हमें ये लग रहा होता है कि भाई वो देखो वो हमें देख रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में क्या कहेगा, या पता नहीं मेरा ये अंदाज सही है या नहीं है. अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि कुछ पॉजिटिव चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और समटाइम्स आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज भी लाते हैं जो कि ये होता है कि जी लोग क्या कहेंगे नहीं, लोगों को मजीद ऑब्जर्व कर या नहीं इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, जो फैक्ट्स हैं या चीजें हैं या लाइफस्टाइल है. बिकॉज ऑब्वियसली अब आजकल के दौर को अगर मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करें तो अब कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो कि अब एक नीड है हम सब की. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो इस सब के लिए आपको कंप्यूटर एक्सेस जरूर आना चाहिए बिकॉज ये आपके लिए एक जरूरी चीज है. तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लिए लर्निंग, आपकी स्किल्स को बेहतर बनाती हैं. तो ये वो चीजें हैं जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसी वजह से बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजें हम जो लगता है हमें कि हम इसमें मजीद बेहतर कर सकते हैं, चीजों को अच्छा बना सकते हैं, वो हम इस चक्कर में अक्सर औकात नहीं कर पाते कि लोग जो हैं वो क्या कहेंगे. तो क्या आप भी बात सोचते हैं? और इस वजह से आपको भी याद है कि एक चीज जिस पर आपको आज तक पछतावा है कि यार काश मैं ये कर लेता लेकिन इस टेंशन में ना मैं ये चीज नहीं कर सका, तो वो क्या चीज है वो भी हमें जरूर बताएं. ऑल राइट जी, तो लुकबॉय का मैसेज आ चुका है. कहती है, अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी तबीयत है आपकी? आज लंच में दाल चावल हैं, शुक्र है कि आज आप आ गई हैं. वालेकुम अस्सलाम, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन बस ये चल रहा है. थोड़ा अभी अभी बैठे बैठे मुझे लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा मुतासिर हुआ है, पर कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल एंड यस, हम आ चुके हैं. आपका लंच भी बड़ा जबरदस्त है और साथ ही साथ इनका फेसबुक पे भी कॉमेंट्स आ गए हैं जिससे हम शामिल करेंगे. लेकिन उससे पहले एक अदर ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदामात उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر پوسٹ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.

Yes, my friends. So I am back और आज हमारा मौजूद गुफ्तगु है कि लोग क्या कहेंगे. तो आप भी क्या इस बारे में सोचते हैं और इसलिए बहुत सारे कामों को करने से पहले आप इसी सोच पर पड़ जाते हैं और बहुत सारे काम नहीं कर पाते. आज का हमारा सवाल यह है कि लोग क्या कहेंगे. अच्छा, आज के सवाल में ना दो अदद ट्विस्ट भी है, मतलब दो अदद नहीं, एक अदद ट्विस्ट है कि हम एक पहले आपसे ये जानेंगे कि लोग क्या कहेंगे, उसके बाद हम इसी सवाल में एक और एड ऑन भी करेंगे और वो भी जानेंगे. लेकिन पहले हम आपसे ये जानेंगे कि जी लोग क्या कहेंगे, ये छोटी सी लाइन आपकी भी जिंदगी को कर रही है मुतासिर. अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल पेज पर जो है वो लुक वर्ल्ड ने किया है मैसेज, तो सबसे पहले हम उसी को शामिल करेंगे. कहती है, लोग क्या कहेंगे ये बात मैं बहुत सोचती हूं और अक्सर कुछ नहीं कर पाती इस ख्याल से कि लोग क्या कहेंगे. ओके, यानी कि भाई लुक वर्ल्ड को ये बात बड़ा मुतासिर करती है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले करने से पहले इसी ख्याल में गुम रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये टेंशन रहती है इन्हें. अच्छा जी, सवाल तो हमने पूछे लेकिन तरीका कार आपको बताना भूल गए हैं. सो इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर दें 3636 पे, और साथ ही साथ आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमने स्टेटस कर दिया है अपडेट. तो भाई लुक वर्ल्ड तो ये साफ साफ कहती हैं कि वो बहुत सारी चीजें इस वजह से नहीं कर पाती क्योंकि ये खौफ है कि लोग क्या कहेंगे. उसी के साथ साथ रशीद खान भी मैसेज करते हैं, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम जी, वी आर एब्सोल्युटली फाइन. और कहते हैं कि जी आई एम गुड, यस, छुट्टी में बिजी रहा फिर भी नींद पूरी की. ये तो बड़ा अच्छा काम किया कि भाई बिजी रहने के बाद भी अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. कहते हैं ऑफिस से सुन रहे हैं, दिन अच्छा गुजर रहा है. कहते हैं दाल माश है इनके लंच में, आपके लंच में, मेरे लंच में आज ऑनेस्टली आई डोंट नो कि क्या है. कहते हैं लोगों की परवाह नहीं करता, मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूं और लोगों का काम तो कहना है. पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. वाह रशीद खान, आपका जवाब तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त बात है भाई, जो करना है वो करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, और ये अच्छी बात है. इस तरह आप अपनी लाइफ को ना अपने तौर पर अपने तरीके के अकॉर्डिंगली जी रहे होते हैं. लेकिन आज मजा आएगा क्योंकि सबकी राय हम शामिल कर रहे हैं. लुक वर्ल्ड इसके अपोजिट कह रही है, रशीद खान कह रहे हैं कि नहीं, मुझे परवाह नहीं होती लोगों की. सो शो इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. बिल्कुल जी, आप सब अपनी राय जरूर दें इस बारे में कि लोग क्या कहेंगे, छोटी सी लाइन आपको भी कर रही है मुतासिर बहुत से फैसले करने से, बहुत से काम करने से. तो आपकी क्या राय है जरूर दें. जब तक हम चलते हैं स्ट्रैक की जाने भाई, स्ट्रैक की रिक्वेस्ट हमसे रशीद खान ने की है, तो इसे हम शामिल करेंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि हम आपके साथ 2 बजे तक मौजूद हैं. तो बहुत सारी बातें होंगी, ये बात तो तय है.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
0: 0311117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. This is the Lunchtime Special. Only on FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jail. Across Pakistan. FM 100.
5: You're in tune with the Lunchtime Special on the Big One. FM 100.
6: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

तो प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक ट्रैक हमने कर दिया है आपको डेडिकेट, और उसी के साथ साथ आपको तरीकाकार भी बता देते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने स्टेटस अपडेट कर दिया है और सवाल आपसे पूछ लिया है कि लोग क्या कहेंगे. ये छोटी सी लाइन आपकी जिंदगी को भी मुतासर करती है, या आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे और वो कर दिखाते हैं जो भी आपको करना आप चाहते हैं. तो ये हमारा आज का सवाल है, और उसी के साथ साथ हम आपसे ये जानेंगे कि भाई आपके लंच में क्या मौजूद है, बिरयानी, निहारी, पुलाव, कबाब या फिर कुछ और बड़ा मजेदार सा आज बना है, जिसका नाम जरा मुख्तलिफ है और बहुत ही यमी है. सो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. मौसम आज थोड़ा सा गर्म है अलबत्ता कराची का, लेकिन आजकल जो है ना वो काफी टाइम से लोग जो है वो पाए खा रही हैं, निहारी खा रहे हैं अपने लंच में, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है ना तो इस तरह की चीजें आप खुशी से खा भी रहे होते हैं. तो कुछ ऐसा ही इस वक्त आज आपके लंच में भी मौजूद है, या फिर कुछ और है मुनफरिद और बड़ा ही लजीज. तो लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, और इसे बताने का तरीकाकार भी बिल्कुल सेम है, यानी कि आप 3636 पर मैसेज करें या आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि भाई अभी तक रशीद खान और लुक वर्ल्ड ने हमें अपना लंच बता दिया है कि उनके लंच में जो है वो एक लुक वर्ल्ड के लंच में दाल चावल है, रशीद खान जो है वो माश की दाल खा रहे हैं, और बाकी लोग क्या क्या खा रहे हैं या पका रहे हैं जरा हमें भी तो बताएं, ताकि हम भी आपका लंच सुनकर लुत्फ अंदोज हो जाएं. तो जब तक आप हमसे अपना लंच शेयर कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि हम भी क्यों खाली खाली रहें, क्यों ना एक अदर ट्रैक की जानिब चलें. आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन. तो शामिल करते हैं ट्रैक और आते हैं वापस ट्रैक के बाद. जब तक अपना लंच हमें जरूर बताएं.

0: तो लंच में क्या है? हमें जरूर बताया भाई, हमारे पास ये मैसेज करते ही जो गुमनाम मैसेजेस है ना वो तो लाजमी आते हैं, और इस मैसेज में हमें पता चल चुका है कि आज इनके लंच में मिक्स सब्जी है, दैट इज सो नाइस। और अभी जो है ना, क्योंकि थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है और हम थोड़ा अभी सर्दी के करीब भी जाने वाले हैं, हद तक के अभी तो हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, जो कि गर्म महीने होते हैं, मतलब गर्म महीने इन दिस सेंस कि ना तो मौसम ऐसा हो जाता है कि भाई ठंडा ठंडा हो गया, या तो ना तो पीक की गर्मी होती है, लेकिन ये मौसम जरा दरमियाने रहते हैं, कुछ दिन गर्म कुछ दिन बेहतर, इस तरह का टाइम है। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि बड़ी मजेदार और बड़ी लजीज शक्ल इख्तियार करने वाली सब्जियां जो है ना वो आ चुकी हैं। एंड द गुड थिंग इज दैट कि भाई इस मुझे लग रहा है कि गाजर थोड़ी ज्यादा जल्दी आ चुकी है, क्योंकि लाल वाली गाजर जो है वो अब मंजर यहां पर आ चुकी है। और सब्जियां इस वक्त काफी महंगी चल रही हैं, हद तक खीरे तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जी आप कोई सोने की चीज खरीद लें या खीरे खरीद लें, क्योंकि खीरे इस दफा जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खीरे और टमाटर जो है वो इस दफा फुल ऑन एटीट्यूड में है, और पता नहीं इनका एटीट्यूड कब कम होगा, आई डोंट नो। लेकिन भाई आपके लंच में क्या, ये भी जरूर बताएं। फिर हम वापस आते हैं हम अपने मौजू पर, और मौजू पे वापस आने से पहले शामिल करते हैं एक अदद ब्रेक, एंड देन वी विल बी राइट बैक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111-7837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
4: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
4: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.

Yes, my friends, we are back to the topic. Topic पर वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है आप लोगों के साथ. तो जी हाँ, आज हम एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम ये बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे. और हम ये बात भी साथ साथ ऐड करना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहते ना कि लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे साथ ही साथ आप ये भी बात ऐड करेंगे कि लोग तो कहते रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना. अच्छा जी, आज हम आपसे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी शेयर करते हैं, जो कि सोशल एवोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इंसान नेचुरली ये चाहता है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे. इसलिए हम अक्सर अपने बिहेवियर को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे लोग हम पर कितना ध्यान दे रहे हैं. इस फिनोमेने को जो है वो साइकोलॉजी में जो है स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है. यानी हमें लगता है कि सब लोग हमारी मिस्टेक, हमारी ड्रेसिंग या हमारी ऑकवर्डनेस या हमारे डिसीजंस को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अक्सर लोग अपनी ही लाइफ में बिजी हैं और वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे होते जितना हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आज हमने जो कपड़े पहने हैं वो कोई देख रहा है या हमने जो कोई मिस्टेक की है उसको सब जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. और अक्सर औकात हम इसी वजह से ना बैक टू बैक मिस्टेक्स कर लेते हैं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं. तो हम सोचते हैं कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला खुद सोच रहा हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. और ये बात तो ठीक है, हमें हर वक्त ही लग रहा होता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जो सामने बैठा है वो भी ये सोच रहा हो कि जी मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है. सो ये एक छोटा सा एग्जांपल भी आपसे शेयर करते हैं. चलिए जी, सपोज कि आप ऑफिस की यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आपको लगता है कि आज मेरा ड्रेस थोड़ा डिफरेंट है, सब नोटिस करेंगे. आप पूरा दिन अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन शाम को जब आपको किसी कोई पूछता है कि तुम मेरा ड्रेस नोटिस किया, हो सकता है कि नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया. हम अपने बारे में जितना सोचते हैं दूसरे लोग यूजुअली उतना नहीं सोचते. ओके जी, यानी कि साइकोलॉजी भी इस बारे में बात करती है. और इस जो है वो फैक्ट को क्या कहा जाता है स्पॉटलाइट इफेक्ट. यानी कि हम सिर्फ इसी टेंशन में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, हम इस टेंशन से नर्वस रहते हैं. अच्छा जी, आपकी लाइफ में लोग क्या कहेंगे ने सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट किया आपकी लाइफ में, आपके करियर को, आपकी शादी, ड्रेसिंग, बिजनेस, सोशल मीडिया या फैमिली डिसीजन? तो आपको सबसे ज्यादा लोगों ने किस मरहले पे इफेक्ट किया, जहां पर आपने बस इसी टेंशन में अपने टाइम को जो है वो वेस्ट किया कि लोग क्या कहेंगे. और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने करियर अपॉर्चुनिटी को भी इसी वजह से वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि वो मेरा कजन है ना, उसने इंजीनियरिंग ली है, तो अब सोसाइटी का प्रेशर मुझ पे बहुत है और मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं ली और कोई और सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि अगर आर्ट्स वगैरह ले लिया. भाई, हर इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है, और हम अक्सर औकात अपने करियर का फैसला भी लोगों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं कि वो चीज लेनी है जो मेरे कजन ने ली है, मेरी खाला की बेटी ने ली है या मेरे मामू के बेटे ने लिया है. बस यही टेंशन ना हमारे अक्सर औकात हमारे करियर के फैसले को भी बहुत मुतासिर करती है. तो क्या कुछ ऐसा आपने भी किया है? तो हमें जरूर बताएं. इसका जवाब देने के लिए हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस अंटिल एंड अनलेस यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रैक.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
1: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM247365।
2: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
3: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
4: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
5: हमारी जिम्मेदारी है।
6: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100, 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
7: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
8: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन connecting you,
9: connecting,
8: holding you,
9: holding
8: with FM 100.
10: FM 100. FM 100.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
3: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
4: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
1: 100 FM.
5: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.

0: लंच टाइम अपनी कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: FM 247365

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: बाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कोयटा तो जित्ती ने बीबी जोया गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली अभी

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

Two.

0: to the bank. Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आग

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता, लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंदराज complaint.pta.gov.pk या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंदराज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंदराज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: facebook.com/fm247365 fm247365
7: back to back only music, no RJ talk,
8: only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताब लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

Come on.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: आप समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: किसने कहा था पैसे

0: यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: कैपिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
6: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहाँ मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने अपना आपको से तीन बार मौत दे
9: दिया। टाइम्स यू मनु ऐसे कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
13: facebook.com/fm247365 FM 247365

पसंद मुझको पास आके बैठ फिर चेक कर फ्लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर करके करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब?
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
1: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का

0: बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास कैश है ना।
1: अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: अपनी हज अकसात की अदायगियाँ मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: Reliable Bank. Easy wala bank.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: FM 24/7/365

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
2: 100 FM। लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ। 100 FM।
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज़ कैश है ना।
4: FM 24/7 365 FM 100।
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
0: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियाँ छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 9 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM। लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर क्विटा से जीती है बीबी जोया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
5: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती है। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

dedication for maximum music.

Hello, hello, mic check 1, 2, 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum, Pakistan. सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब. कैसे मिजाज और कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे. सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100. क्या हाल है दोस्तों? मंडे और मंडे वाले दिन, पुराने गाने. काफी सारे दोस्तों को तो पता है कि मंडे वाले दिन जो है जरा ओल्ड इज गोल्ड. नाइन टू इलेवन आपका और मेरा साथ रहता है. कोशिश करता रहता हूँ कि जरा

हिट गाने हो। अगर आप सुन रहे हो गाड़ी में तो सफर अच्छा गुजर रहा हो, और अगर घर में बैठे हैं तो भी टाइम अच्छा गुजरना चाहिए। बातें आप लोग मुझसे करते हैं मैसेजेस के थ्रू भी, के एच आई स्पेस टेक्स करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636। बातें जो है वो कोई खास नहीं होती, सारी नॉर्मल बातें जो दुनिया में चल रहा है उस पर डिस्कशन, फेसबुक पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहे हैं, लोकल मीडिया क्या कह रहे हैं, सुन सुन के कान पक जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बस चुपचाप जो है ना रेडियो सुनना चाहिए, और वो भी FM 100। तो बिल्कुल जनाब, आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, हल इसका मैं सोल्यूशन निकाल के दूं, ऐसा कोई पक्का वादा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छी बातें हों, मजे की बातें हों आपसे, और पुराने गानों की जो यादें हैं, असल गानों के साथ यादें जुड़ी हुई होती है भाई, वो भी होता है। तो जनाब आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक से, और मैसेजेस दोबारा बता दूं, के एच आई स्पेस टेक्स करेंगे और सेंड कर देंगे 3636। हाय हाय हाय।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को

और वही जनाब वेलकम बैक सिंड्री एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आपके पहुंचते हैं 3636 पर। अच्छा जनाब हमें मैसेज कर दिया सबसे पहले इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत सारी दुआएं इन्होंने लिख दी हैं और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक पे आओगे कि नहीं आओगे, आ जाओ। चले अच्छा थोड़े से जरा एक दो गाने लगा लूं उसके बाद मैं आता हूं, ठीक है? अच्छा जनाब इसके अलावा रानी हुसैन भी हमें सुन रही है। रानी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और इसके अलावा मुश्क लैला भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एफएम 100 के किंग, क्या हाल है? और आज मेरी क्यूट दोस्त रिजा भी आपको सुन रही है। रिजा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? किंग कोई भी सॉन्ग रिजा को और संजू के लिए प्ले कर दें। ठीक हो गया जनाब, सारे सुपर हिट हैं। मुश्क लैला बिल्कुल टेंशन न लें आप। उम्मा सिद्दीकी कहां गाए मैं आप? मैसेज कर दिया उन्होंने भी बहुत तवील अरसे के बाद। तबीयत तो ठीक है, कैसी है? सलाम अयाज। वालेकुम सलाम। फर्स्ट सॉन्ग लेरिस क्या जबरदस्त, हकीकत के करीब। ये आपने उमा जी बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। गाने म्यूजिक ठहराओ सुकून। क्या बात है उस दौर के म्यूजिक की। और इस बारू क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। वालेकुम सलाम, दुआएं देने का शुक्रिया, इतना सारा प्यार, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद शहजादे, दिल से दुआएं। संजू जी क्या हाल है आपके? संजीदा भी आ गई हैं और गाना इनको पहला भी बहुत अच्छा लगा, आगाज तो जबरदस्त सॉन्ग से किया है। चले जनाब, और इसके अलावा वो भी कह रही कि भाई आप भी लाइव आ जाएं। चले मैं थोड़ी सी देर में एक दो गाने जरा ऑन एयर कर दूं और उसके बाद तो है वो हम आते हैं। अच्छा अभी अब नेक्स्ट ट्रैक की जाने, पहला गाना आप लोगों को पसंद आ गया तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रैक भी। वैसे तो नैयरा नूर के सारे गाने मुझे पसंद है लेकिन स्पेशली ये ट्रैक जो है तेरा साया, हाय हाय हाय कमाल है ये गाना।

0: The best of 90s, 80s and today with Ayaz Ahmad.
1: And why jana, welcome back to Sun Rahe FM 100 aur saath saath kar rahe hain messages bhi. Zari Noor, kya haal hai aapke? Salam, kaise hain? Sabko salam bhi inhone keh diya. Iske alawa Ghayasuddin Balban Multan se hame sun rahe hain aur message kar diya. Ghayas, kaise ho mere bhai? Puri team ko salam. Wa alaikum assalam. और इसके अलावा बिलावल गिजरी से मैसेज कर रहे हैं, आज भाई आपको, सुब्बल जी को, कादिर भाई और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, ओके टेक होंगे भाईजन, ओके टेक बिलावल भाई, ओके टेक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं तबीयत कैसी है? अच्छा जी, मुश्क थैंक्स कहनी है। अरे मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। हाय हाय, संजीदा जी गाने पसंद आ रहे हैं और कह रही है भाई जबरदस्त शायरी और क्या, बाकी भाई पुराने गानों की क्या ही बात है। अच्छा जी, रानी हुसैन भी मैसेज करें, मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। सब बोलो भाई आमीन, सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, इसके अलावा हुमा सिद्दीकी कह रही है, कोई अपनी पर्सनल मामला है, क्या चले जनाब, जो भी हो आपको हमेशा सारी प्रॉब्लम से दूर रखे। और कह रही है आप है ना एक्स्ट्रा पेनाडोल, हाई एक्स्ट्रा पेनाडोल ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल जनाब, एफएम 100 तो हमारी जान है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक के जाने, लेकिन उससे पहले एक जरा, एक छोटा सा, जरा थोड़ा जरा माहौल ये वाला हो जाए। बहुत डिसेंट गाने सुन लिया हमने, आए हाय मिक्स चलेगा भाई आज शो में। हाय, डांस याद आ रहे होंगे, यकीनन आपको डांस याद आ रहे हैं, पंजाबी फिल्मों के डांस कमाल होते हैं।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैज कैश है ना.
2: 100 FM.
3: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
2: 100 FM.
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
2: 100 FM.
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
2: 100 FM.
6: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: रुपये जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और एजाज मक्सी भाई कह रहे हैं, एजाज भाई आपको बिलावल जरी और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा अली खान जो है वो भी हमें मैसेज कर रही है, फर्रुख शाहबाज भाई कनाडा में है और वो कह रहे हैं कनाडा कब आओगे, और मैं उनसे कह रहा हूँ यार हम मुल्तान नहीं जा पा रहे, कनाडा कैसे आएंगे। और इसके अलावा अंसारी के भी मैसेज आ गए हैं, और सैम समरा जी कह सलाम, आरजे बनने के लिए आरजे का अच्छा जनाब कोई आपने जो किया जो मेरी समझ से बिल्कुल ऊपर टॉप गियर से निकल गया, वहां जमीन कह रही है जैसा करना चले जनाब। और बच्चल कलहोड़ो साहब आ गए हैं, ग्रेट हीरो बच्चल भाई, आप बच्चल भाई हमारे बड़े प्यारे से डायरेक्टर, बच्चल भाई कहां है शॉट हो किधर का है वो भाई। आप सिद्दीकी भी जो है वो आ गए हैं, और मुझे आज के दिन का इंतजार बिल्कुल फरीदा बुरहानुद्दीन, आज मैं आपको पुराने पुराने गाने सुनाता हूँ तो यकीनन इंतजार रहता ही है। आयशा अली खान हसर भाई हंसती रहो मुस्कुराती रहो, और याहिया हमीद आ गए हैं, अयाज भाई आपके अंदाज स्टाइल सबसे अलग है। हाँ मैं साइड पे बैठा होता हूँ, बदतमीजी नहीं करते आप, और आई एम रेगुलर फेमस स्कॉलर ऑफ ऑल टीवी शोज। अरे या भाई लव यू भैया, लव यू, और आजकल तो मॉर्निंग शोज भी कम हो गए, तो आजकल कहाँ आप फोन कर रहे हैं। अंसारी कह रहे हैं भाई अब लाइव कॉल नहीं, लाइव कॉल इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे, हमारा तरफ फोन का सिलसिला है वो जैसे ठीक होता है तो बिल्कुल। वहां जमीन सलामत रहे, अच्छी लिसनर है, चले जनाब। रूना लैला का सॉन्ग चला सकते हैं, मैं चला लूंगा, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं रूना लैला के। रूना लैला तो वैसे ही हमारी बहुत फेवरेट है। लो बैनर भाइयो, रूना लैला का गाना तो लगा तो, लेकिन जरा ब्रेक का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। एजाज भाई आपका मैसेज आया लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा क्योंकि लाइव हूँ, उस वक्त फेसबुक लाइव है, तो जैसे ये फेसबुक का सिलसिला खत्म करेंगे ना तो फिर मैंने आपका मैसेज पढ़ना है। और इसके अलावा मिसेस फारूक क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहे मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और आबिद सिद्दीकी आ गए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज भाई? आबिद भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे, मजे में है? किरण नमान वास्ते, ये शाहरुख खान की फिल्म याद आ गई। ओए होए मेरे बचपन का दोस्त आ गया, अमजद फारूक यूके में होते हैं, सलाम है आप। अमजद तू कितना वो दे सराकी, हमारे अमजद भाई हमारे सराकी दोस्त हैं, और थोड़ी सी इनसे सराकी में मैं बात कर लेता हूँ। अमजद ते को खैर खरी है, ते को पता ही क्या नहीं, तू कितना गायब होते यार, इतनी मीठी जबान है कसम से, दिल करता सराकी में शो कर ले, लेकिन ज्यादा ऐसी नहीं आ रही होती, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना मुझे सही आ जाती। अंसारी कह रहे हैं आपका शो हम सब शौक से सुनते हैं, अंसारी भाई आप लोगों की मोहब्बतें और आप लोगों का प्यार है। किरण नुमान वास्ती फिर आ गई हैं, मेरे बेटे का नाम ले लें अयान वास्ती, अयान की हाल है पुत्र, ठीक हो खैरियत से हो? अच्छा जी, और मगरूर शहजादे लग रहे, अरे नहीं करें सरकार कहां मगरूर, मगरूरियत तो है ही हमें। मीरू खान आ गए, मीरू कैसे हो मेरे दोस्त मेरे भाई? आई एम गुड अमजद भाई, आई एम गुड, हाउ आर यू भाई? आप नाहिद अख्तर जी का सॉन्ग भी, नाहिद अख्तर भी मौजूद है, रूना लैला भी है, मिक्स करके चला दूं क्या करूं मैं, खिचड़ी पका दूं इनकी, एक एक करके सुनाऊंगा एक एक करके, मेरी मैं अभी लगाता हूं जरा ये टाइम चेक जरा आगे वो जरा प्ले कर लूं, और कमर्शियल है उसको प्ले करने के बाद रूना लैला जी का हमें खोकर बहुत पछताओगे, ये लगा दूं, अच्छा गाना रसी है। अच्छा आपकी आवाज व स्टाइल है माँ जमीन, बस मैं ट्राइया मारता रहता हूँ अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से शोखा भी बना रहता हूँ। मिर्जा जट कह रहे हैं वाह वाह ये रोशन चेहरा, सरकार लाइटें मुंह पे आनी टाइट, इस वजह से रोशन लग रहा है, वरना तो ऐसी नॉर्मल ही है। अच्छा जी इंशाल्लाह आपकी बर्थडे में जरूर आऊंगी। अरे फरीदा बुरहानुद्दीन बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब टाइम चेक, और 4 मिनट की बल्कि 5 मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: इट्स 9:45 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
8: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की सूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
9: FM 24/7 365 FM 24/7 365
10: Active,
11: yummy,
10: adorable,
11: zabardast.
10: Say that I got a crush on you.
11: If you ask, then listen.

सुनो जनाब, बैक सुन रहे हैं FM 100 और मेरे साथ मेरे दोस्त फेसबुक वाले भी मेरे साथ होते हैं। अच्छा, यहाँ तो हम जरा कमर्शियल ब्रेक की तरफ चले जाते हैं और जरा आपको सिर्फ वही आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन फेसबुक वाले दोस्तों को ये एडवांटेज है कि वो उनसे मेरी डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन होती रहती है, बातचीत करते रहते हैं हम, और उनके इतने सारे मैसेजेस, माजमीन खोजा भी आ गई है, संजीदा भी आ गई है, सैयद जान अली जैदी भी आ गए हैं, मोहम्मद आलम साहब भी आ गए हैं, तो इन सबके मैसेज में शामिल करता रहता हूँ। और बात हो रही थी रूना लैला की और हमें खोकर कह रहे भाई हमारा बड़ा फेवरेट है, हुमा जी का भी और संजीदा जी का भी। अच्छा जी, बिलावल आ गए सर, ट्यूसडे और वेनसडे को ईद मिलादुन्नबी। हाँ जनाब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे यानी कल और परसों हमारी छुट्टी होगी, तो मैं पहले से बता दूं आप लोगों को कि बाद में नाराज हो रहे होगे क्यों नहीं आए। अच्छा जी, इनामुल हक अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? नाइस शो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम इनामुल हक भाई। अच्छा चाची का बोला, चाची का, अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हो गया, चाची की तरफ से ना ये ट्रैक, चाची को भी मैं डेडिकेट करूंगा और यकीनन वो चाचा के लिए कुछ, चाचा मगर बड़े प्यारे आदमी थे। तो चाचा को भी डेडिकेट करेंगे, चाची को भी डेडिकेट करेंगे, हुमा सिद्दीकी को भी और संजू दी ग्रेट को भी कर देंगे। चले जनाब, मैसेज करेंगे KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। एजाज भाई मैसेज आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा।

राइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। और साथ साथ जनाब स्टेट एजेंसी का काम भी मुझे लग रहा है कि मैं शुरू कर रहा हूँ। सही है, जॉन अली जैदी पूछ रहे पीसीएचएस में प्लॉट के क्या प्राइस है, 2 करोड़ 1 करोड़। हालांकि बातें करोड़ों की कर रहा है, जेब में चेक करो 100 रुपए है कि नहीं, बर्गर खाने के पैसे हैं कि नहीं है, प्लॉटों की बातें कर रहा है मेरा भाई। अल्लाह करे, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ ऐसे। और इसके अलावा मिसेस फारूक यही गाना में लगाने वाला हूँ, तेरी उल्फत में, बस बेफिक्र हो जाए आप, तेरी उल्फत जनाब लोगों ने वोट दे दिया। इसके अलावा शाजिब खान, खान ज्यादा मैं बोलने वाला था लेकिन शाजिब खान का मैं मैसेज आ गया। अस्सलाम वालेकुम याद भाई। वालेकुम सलाम शाजिब, कैसे हो? रेडियो पर गाने नहीं आ रहे, चलो वो कोई बात नहीं, इसी पे सुनते रहो। मेरा नाम नौशी है, नौशी भी अब क्या है, नजमा नौशाही। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वही समझ लो। सही है जानी, हंस रहे यार तुम, मैंने इसका मतलब सही बात बोली है। ये जो करोड़ों की बातें कर रहे होते ना अंदर जेब में ना, बिल्कुल फारक सेवन अप की बस चालियां निकल रही थी जेब में से। बातें चेक करो तो करोड़ों की, अच्छा भाई वहाँ का कितने का होगा, वहाँ कितने का, जरा सिगरेट तो पिलाना भाई, बीड़ी तक के पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रहा होता हूँ। मिसेस फारूक कह रही है 6 करोड़, लो जी 6 करोड़ का प्लॉट है। मैं तो कह रहा हूँ 600 रुपए की तुम बिरयानी को अच्छी से खा लो, वो ज्यादा अच्छा फैसला होगा। और इसके अलावा, अरे बेटा मेरे पसंद का, अच्छा आपकी पसंद का, अब पसंद के तो गाने नहीं है, बस क्यू शीट बनी हुई है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। लेकिन अखलाक अहमद आपको पसंद है मेरे ख्याल से, उनका एक गाना है मैं थोड़ी सी देर में प्ले कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर में। फैसल शाकिर अली, फैसल मेरे भाई कैसे हो? खट्टा मीठा हमारा एक ड्रामा था पीटीवी पे, और वो इतने अरसे मैंने किया, और उसमें फैसल जो था हमारा शहजादा। अरे मेरा एजाज भाई मुझे मैसेज कर रहा है, कोई बहुत मुझे लग रहा है अहम बात है, मैं कर नहीं पा रहा, बस 5-10 मिनट दोगे मुझे, मैं जरा ये लाइव 10 मिनट बाद बंद करूंगा, फिर आराम से आपके मैसेज मैंने पढ़ने ऑन एयर, ठीक हो गया ना? अच्छा जी, फैसल शाकिर कह रहे हैं काफी टाइम के बाद नजर है। हाँ जनाब फैसल भाई, आप कितने गायब हो? अल्लाह पाक शो को नजरे बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। डॉलर्स की बातें करें रुपए, अबे हाँ यार बात तुमने फैसल भाई बिल्कुल ठीक की, बरकत ही खत्म हो गई है पैसों में तो, अब बात करो डॉलर्स की, करोड़ों की बात। मिर्जा जट भाई मैंने बस मैंने कर दी बात, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी। लीजिए जनाब नाहिद अख्तर का खूबसूरत सा ट्रैक, और वो है कैसे,

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: FM 100's time check. It's 10 p.m.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: वाटिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर
5: क्वेटा में गोल्ड क्वाइन खटिया है बीबी जोया
4: हाने तवा दे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम खटे सगो था. बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ए ढेर सारा इनाम खटियो.
5: गुजरल हफ्ते जे विनर जो नालो जानन लाए वाटिका शैम्पू जा सोशल मीडिया पेजेस विजिट करियो.
4: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
7: FM 24/7/365
2: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
8: एक्टिव यमी जबरदस्त. तो सुनो यार.

राइट जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे FM 100। बिलावल कह रहे हैं सर ट्रांसमिशन क्लियर नहीं आ रही। सर ये थोड़ा सा तरह मसला है, तो जरा सा बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पे भी काम हो रहा है, और ये टेक्निकल मसला है। मल्टी वाइटामिन सॉन्ग जबरदस्त। अरे हुमा से देखी, बहुत शुक्रिया। मेहंदी हसन अभी जरा अहमद रुजी साहब का गाना मैं लगाता हूँ, उसके बाद जरा क्या कहते हैं मेहंदी हसन साहब को कैसे भूल सकते हैं, वो तो मस्ट है ना। तारिक अंसारी आ गए, सलाम। अंसारी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और इसके अलावा जो आप हाय है बोलते हैं, आगे मैसेज ऊपर चला गया। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शो सुपर डुपर, बड़ी मेहरबानी मिसेस फारूक। कोई नहीं अमिताभ, आप शहजादे अयाज आए, क्या बात है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, फूफा अगर मेरे सुन रहे हैं, और वो सुन रहे होते हैं, फूफा लव यू, इतने प्यार से फोन कॉल करते हो, लेकिन आज नहीं करना, मैं लाइव हूँ। तो फूफा जी, अहमद रुश्दी का ये ट्रैक आपको मैं डेडिकेट करता हूँ। और जहीर चंगेजी भाई हमारे जो है वो हमें देख रहे हैं प्यार से, मोहब्बत से, मैडम का गाना। अच्छा, ये अहमद रुश्दी साहब को जरा मैं प्ले कर दूं, उसके बाद मैडम जी का मैं गाना प्ले करूंगा। यार एक मैडम जी का पंजाबी गाना रखा मैंने, एक मिनट देखने दे कौन सा है वो। चले मैं ढूंढ के, मैडम जी का गाना तो मस्ट है, कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी अहमद रुश्दी साहब और मेरे प्यारे से फूफा को मैं डेडिकेट कर देता हूँ।

0: Thursday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मुझे देख भी रहे हैं अयाज अहमद की आईडी पर। और जनाब अजीम शख्सियत तशरीफ ला चुके हैं, ग्रेट आमिर सलीम भाई अमेरिका में होते हैं, डैलस में, और यहां से वो हमें देख रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, शुक्रिया। और सबको उन्होंने सलाम दुआ भी कह दी है। जनाब वालेकुम सलाम आमिर सलीम दी ग्रेट। और चंगेजी जहीर चंगेजी भाई याद भी कर रहे थे, मिर्जा शुजात कह रहे हैं जबरदस्त प्लेलिस्ट, और अख्तर अली खान खटक चुन चुन कर गाने लगा रहे, सरकार बस आप लोगों की मोहब्बतें प्यार हैं। अच्छा जी, आपको देखकर माशाल्लाह कह रहे हैं, अरे संजीदा जी बहुत शुक्रिया, प्यार मोहब्बत है आप लोगों के लिए। दानियाल आफरीन के भी मैसेज आ गए हैं, सलाम अलैकुम। अच्छा जी वैस भाई खैरियत से, वैस मेरा बस अयाज नाम है, वैस तो बस साउंड आ रही है, ऑसम सॉन्ग्स प्लेलिस्ट बैक टू बैक। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, आसिम अफजल भी आ गए हैं, आई एम गुड सर, आप बताइए शादी कर ली आमिर भाई आपने या नहीं, जवान हो गए जहीर भाई, बच्चे हो गए दो, क्या हो गया जहीर भाई, कहाँ चल रहे हो, डिले पे चल रहे हो, जवान हो गया शादी को, आप दूसरी का पूछ रहे हो तो वो मैं अभी पूछूंगा, अमेरिका चलेंगे, एक गोरी भी वो अक्सर हमारे होते हैं ना भाई, चलेंगे तो खैर जी आमिर भाई का पर्सनल मामला। आसिम अफजल कह रहे हैं डीजे क्रिसेला क्यों नहीं शो कर रही, मेरे ख्याल से बिजी है या अल्लाह खैर करे, उनकी तबीयत भी सही हो। अच्छा जी और संजीदा जी बहुत शुक्रिया, इतने सर प्यार, इतनी मोहब्बतें आपने दे दी है, आपकी मोहब्बत नजर आती है FM 100 से कॉलर्स के साथ, नो डाउट जनाब, ये इनके यार ये सारे मेरे अपने लगते हैं सारे। और हुमा सिद्दीकी का जो ये बात है बहुत ही अच्छी, और मंडे को बिल्कुल जनाब, मंडे वाला शो भी स्पेशल है, लोग जो सुनते हैं वो भी बड़े स्पेशल है। दूसरी अच्छा अच्छा जहीर भाई फिर तो सही भी सवाल, मैं आपके साथ हूँ जहीर चंगेजी के, हम साथ हैं, आमिर सलीम से पूछ रहे हैं कि शादी वादी कर ली उन्होंने। अच्छा अगर इनको वीजों का कोई मसला होता ना शायद वो कर लेते, लेकिन अभी फिलहाल आमिर सलीम को ऐसा कोई मसला नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ी इनको। अयाज भाई दानियाल बात कर रहा हूँ, दानियाल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं खैरियत से हैं। अच्छा जी कहने के मैं जो आपके शो में होगा उसे पोस्ट किया करें, मैं भी करता हूँ थोड़ी देर बाद इसको, मैं पोस्ट कर दूंगा बेफिक्र हो जाए। अच्छा भाई जरा मैडम जी के गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो मैडम जी का ये खूबसूरत सा ट्रैक पंजाबी ट्रैक।

भाई जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100। और तारिक अंसारी भाई कह रहे हैं, आयाज आज तो आप चमक रहे। आज मुंह धो लिया मैंने, बस ये कर लिया और जरा शेप बना ली थी। और आमिर सलीम भाई जो है ना, अमेरिका से हमें देख रहे हैं। और आमिर भाई के लिए खास तौर पे, क्योंकि वो देख रहे हैं, वैसे तो मैं मैडम जी के गाने और पाकिस्तानी फिल्में गाने लगा रहा हूं, लेकिन क्योंकि इतनी दूर से लेजेंडरी हमारे आमिर सलीम भाई देख रहे हैं और इनका मैं खुद बहुत बड़ा वाला पंखा हूं। ओनली प्ले रिमिक्स ऑफ सरकार से आमिर भाई नहीं है, वो वाला नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहां, मैं कितने दाम आमिर भाई। अच्छा जी, इसके अलावा जी भाई गुड, जहीर भाई को तो सजा गाना पसंद आ गया। अब यो गाना हमारे पास जो आमिर भाई कह रहे हैं ना, वो मेरे पास मौजूद नहीं। अच्छा, इसके अलावा दानियाल कह रहे हैं TV1 पर शो में। अच्छा जनाब, दानियाल भाई जनाब TV1 शो में वो हमारे साथ होते थे और वहां इन्होंने हमारी खिदमत भी की हुई। भाई दानियाल भाई, लव यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। एले भी आ गई हैं। एले जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अयाज अंकल, अंकल मत बोलो, अपनी तरफ से मैं यंग चल रहा हूँ। अंकल लिख के तुमने कुर्सी से नीचे गिरा दिया मुझे फुल टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, कह लो। खैर, आज की क्यू शीट शानदार, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आमिर भाई। हाँ, स्पेशली आपके लिए ये खूबसूरत ट्रैक। और जितने भी आमिर सलीम के फैन हैं उन तमाम दोस्तों के लिए। और बिलावल कह रहे हैं संजीदा जी शो की रौनक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और बिलावल भाई आप भी जनाब, आमिर भाई लव यू और हम मिस करते हैं। स्पेशली आमिर सलीम को ही ये गाना, उन्हीं का गाना उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं।

बात है जनाब, क्या फील है इस गाने की। आमिर भाई लव यू। कोई बहुत ही दुख दे गई ये खातून, इतना दुखी गाना, आंखों में से आंसू निकलते निकलते रह गए आमिर भाई। और चंगेजी भाई भी यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं जियो आमिर भाई, खुश रहो, क्या गाना गा दिया। बाकी आमिर भाई लव यू, बहुत आला। आमिर भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, आमिर भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं, लाइव हमें देख रहे हैं और हमारी हमारे जितने लिसनर हैं, व्यूवर्स हैं इस वक्त फेसबुक पर, आमिर भाई के लिए बहुत सारी दुआएं। हुमा जी बहुत सही बात की आपने, आमिर भाई का ये ट्रैक कमाल ट्रैक। और इसके अलावा तारिक भाई के बाद कौन, अख्तर अली भाई भी आ गए और चाय का कह रहे अख्तर भाई। अख्तर भाई मैं आज घर से पी के आ गया था चाय, मुझे पता था हालात जरा पतले हैं तो इसलिए मैं पी के आ गया हूँ, टेंशन ना ले आप। अच्छा जनाब ये क्या लग गया भैया, अयाज भाई आप गाने में खो गए, बस किसी ने मुझे जगाया, आ जाओ भाई। बाकी गाना ही ऐसा था फील वाला गाना आमिर भाई का, मैं तो गुम हो गया भाई उसमें। अच्छा जनाब अब मेहंदी हसन साहब के गाने की भी रिक्वेस्ट की गई थी, तो जल्दी से मैं ये प्ले करता हूँ और उसके बाद बहुत लंबी क्यू शीट है,

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: facebook.com/fm247365
7: 247365
8: Active, yummy,
9: adorable,
8: zabardast.

मेहरबान जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ जनाब मैसेजेस कर रहे हैं, केएचआई स्पेस टेक्स्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं 3636 पर। इसके अलावा आप लोग मुझे देख रहे हैं अयाज अहमद की आईडी पर भी, और राणा रिजवान भाई हमारे प्यारे से भाई वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और इसके अलावा अख्तर अली खान खटक भी आमिर सलीम के लिए बहुत सारी दुआएं, और हमीद गुल भाई कह रहे हैं देखा ना था, और आमिर भाई लव यू, बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर जो है ना हमारी ट्रांसमिशन भी देखी और इतना सारा प्यार दिया। आमिर भाई पीसीएचएस भाई जाना, वो डिफेंस शिफ्ट हो गए थे सैयद एजाज भाई, क्या हो गया पैमाने निशात, एक दौर उन्होंने गुजारा वहां पे। आमिर सलीम के सॉन्ग डिमांड बढ़ा दी है, आमिर भाई की डिमांड कम हुई कब थी। अच्छा जनाब आलमगीर साहब को शामिल करते हैं, दोनों गानों की रिक्वेस्ट बराबर आई हुई है, मुझे दिल से ना बुलाना देखा ना था, एक काम करता हूँ आधा आधा दोनों चला लेता हूँ, दोनों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा ये गाना सुनते हैं जरा, चेक करें आप, और वो है कैसे भैया

सुबह जनाब सुन रहे एफएम 100 अयाज अहमद के साथ और आलमगीर साहब को। दोनों गानों की फरमाइशें आई हुई थी, थोड़े थोड़े सुना देता हूँ, थोड़ा सा ये सुन लें, उसके बाद आप लोग मुझे मैसेज करने के चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

सनराइज जनाब सुन रहे हैं फ्रॉम 100 आयाज अहमद के साथ। और जनाब रुबाब जी आ गई हैं और कह रही हैं सलाम सब सुनने वालों को भी सलाम, और कह रही हैं कि आपकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है। नहीं करो, मैं शर्मा रहा होता हूँ इस तरह के मैसेज पढ़ के। और आगे भी बहुत तारीफ है, हालांकि किसी ट्रेजेडी होगी इनके साथ, उसके बावजूद अलग से होकर ये मुझे वो सुन रही हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और हुमा जी के भी मैसेज अब आर मैंने पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और हुमा जी कहनी है आमिर सलीम के गाने और खासतौर पर सजा गाना तो इनका बहुत ही फेवरेट है। अच्छा जहां पूरी स्टोरी भी पता है इनको भाई कि किसके लिए गाया भाई इन्होंने। अच्छा जनाब थोड़ा सा ये ट्रैक और उसके बाद मजीद आपसे गपशप करेंगे। क्या बात है इस ट्रैक की, थोड़ा सा सुनाता हूं।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद हों। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान है। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ टाइम जो है वो भी अपने एंड की तरफ रवाना हो रहा है। तानिया हसन आ गई। तानिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। और जब सुनती हैं तो जरूर मैसेज कर देती हैं, क्या कहने। और हुमा सिद्दीकी कह रही हैं आमिर सलीम आपके घर भी थे। बिल्कुल जनाब, हमारे पड़ोसी भी थे और इस वजह से वो आ जाते थे, कभी हम उनके पास कभी वो हमारे पास। बिल्कुल जनाब, लाइव परफॉर्मेंस के साथ शुगल मेला लगा रहा। इसके अलावा जफर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। जफर साहब क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। और सुबल जी आपका मैंने पूरा मैसेज पढ़ लिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक और FM 100 की पूरी फैमिली

बात जनाब सुन रहे हैं FM 100 और फरीदा बुरहानुद्दीन आ गई हैं और कह रही हैं भाई अखलाक अहमद का गाना कहाँ गया। तो फरीदा जी ये वाला ट्रैक जो है वो मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ।

बात है जनाब, जबरदस्त अखलाक अहमद की बहुत ही जबरदस्त आवाज। अच्छा, एक मसूद राणा साहब ने भी बड़े गाने गाए हैं। ये गाना मैंने आज सुना, पहली दफा मैंने सुना बस।

0: तूफान उठे छोड़ के तुझको जाऊं मैं
1: मेरी सरकार जरा पास आना। और एक और ये गाना भी मैंने पहली दफा सुना, अच्छा लगा मुझे, इसीलिए क्यू शीट में शामिल किया, लेकिन टाइम नहीं है भाई पूरा प्ले कर।

हाय हाय क्या बात है जनाब, ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट दौर में चला गया हूँ। यकीनन ब्लैक एंड व्हाइट दौर का ही गाना होगा। चले जनाब, इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा हिफाज़।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: माजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर टोयोटा तो जीती ने बीबी जोया गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: Music Twister.
4: What's the music?
3: With any soil.

Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हबीबी. म्यूजिक ट्विस्टर में कहूंगा आपको खुशामदीद. आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्लाते गुल्ला. इसलिए वो निशाना होने का बहुत ही आसान सा तरीका है. अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर. जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट ग्लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी. ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी कीजिए तो भी मेहरबानी होगी. कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब. लेकिन उससे पहले मैं करता हूं आप लोगों को वार्म अप. तो वार्म अप करने के लिए चलता है गाना. तो आज पहला गाना एलो फड़ो.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अच्छा भाई ये कुछ ज्यादा ही, हाँ आप सही है। वेलकम बैक कहेंगे जनाब, काटे ना कटे रे रतिया। भाई संजू को ये गाना बड़ा पसंद है तो हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं नंबर वन, और वैसे तो उनको गाने डेडिकेट होते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की जाने। आज हमारे साथ गुफरान भाई हैं। गुफरान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सवाल गुफरान भाई आपके लिए भी है। हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां हैं? एक तो ये सवाल है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो असल सवाल है वो ये कि इंसानी जिस्म की हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? गुफरान भाई हाँ आपने बताना है जरूर। इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां हैं, और सबसे छोटी हड्डी के मुतालिक आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है इंसानी जिस्म में यह हमें बताना है। 3636 बार आज का सवाल हो गया, और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फीता जो काटा गया है वो यूसुफ भाई ने पापोच से काटा है, और कह रहे हैं FM 100 की तमाम फैमिली को, आंटी को, चाची को, हरूसा को, गुलमानों को, तमाम डॉक्टर इमरान भाई खिताब लाला गुफरान भाई, और मेरे वालिद साहब को सलाम का, वालेकुम अस्सलाम। और ओएस तनोली साहब बल्दिया से, कैसे हैं तनोली साहब? ठीक ठाक हो? सलाम के बाद कह रहे हैं कि भाई जान लव यू, और लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं जी ते हैं जी। यार हरारे मिर्जा शुजा साहब आ गए हैं गुज्जर खान तो, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब और प्यार।

0: नहीं आदाब क्यों कहते हो यार, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए क्या होता है? वैसे आदाब भी सही है मगर अस्सलाम वालेकुम कहेंगे आप तो सवाब होगा, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ खैर जी, आपकी आपकी जानिब से तस्लीमात और प्यार का जवाब प्यार है जी। और कौन आ गया? संजू भी आ गए हैं। कह रही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं और खुश आमदीद। पहला सॉन्ग मेरी रूना लैला वर्जन। शुक्रन नदीम, देखें आपके कहे बगैर हमने आपको डेडिकेट भी कर दिया। आवाज कम तेज हो रही है बार बार, प्लीज नदीम चेक करें भाई, चेक करें गुफरान भाई। अभी तो बेहतर आ रही है और बेहतर आएगी, बेफिक्र रहे, यानी कि समझ रही है ना। और आगे बढ़ते हैं जनाब, नौरीन बहना भी आ गई है हमारी फैसलाबाद से और कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज शरीफ है? ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन सवातों को। वालेकुम अस्सलाम। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, आज देखें आपका मैसेज फौरन पढ़ रहा हूँ, टाइम पर किया करें मैसेज पर। वाजिबुल एहतराम नदीम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सज्जाद अली नूरजहान की आवाज में कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए। अभी अयाज ने इतना कमाल का शो किया और उसमें धमाल किस्म के नूरजहान के भी गाने थे, लेकिन हम आपको सज्जाद अली का गाना सुनाएंगे, डोंट वरी। और पेशगी जो है शुक्रिया भी अदा कर दिया समी शेख अयूब आफरीदी खिताब लाला नजीम कुरैशी इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा, हर लम्हा दुआ गो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची। वाओ क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अच्छा खैर जी, ये मैसेज जो है ये समझ से बाहर था बिल्कुल ही। अच्छा भाई जवाब भी बता देता हूं आपको, वैसे तो सवाल में दो सवाल थे, एक सवाल में दो सवाल थे, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ये मैंने पूछा, लेकिन अब ये मैसेज पढ़ने से पहले जाएंगे हम ब्रेक की जाने को।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
0: वेलकम बैक अगेन। मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। सवाल मैंने ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन से पार्ट की होती है, ये आपने मुझे बताना है।

0: और अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और बहुत प्यारे से ट्रैक की जाने बल्लो पढ़ो।
1: ब्यूटिफुल ट्रैक, माय फेवरेट। ये 90s का गाना है जिसको रीमेक किया गया। हाय हाय,
0: म्यूजिक चैनल 4 आता था उस दौर में। ओरिजिनली संग बाय कोलाज बैंड, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया है।

0: वेलकम बैक।
1: कभी तो मुझसे इकरार करना।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक और आई होप यू लाइक इट। मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 बार और हमारी प्यारी सी बहना शहजादी बहना आ गई है जरीन नूर, कह रही है अच्छा सा सॉन्ग संजू के लिए मगर अलग से किसी और के साथ नहीं। मतलब ये क्या हुआ? मतलब यानी कि मैं समझ रहा हूँ, सब समझ लिया हूँ। ठीक है जनाब,
2: जैसा आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे।
0: हैं जी
2: जी, हैं जी।
0: और मिर्जा साहब कहते पे ने बेहतरीन म्यूजिक आला प्ले लिस्ट, जनाब क्या बात है थोड़ी। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। एफएम 100 का बेस्ट आरजे नदीम अख्तर। ओ अल्लाह जी, इन्हीं तरीफा। आई एम मिरहा शाह नाथवा मिरहा, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना। कल स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है हमारी, मगर वक्त ऐसा होता है कि हम अपनी प्यारी सी बहन को बुला नहीं सकते। अगर आपके लिए इजीली हो तो आइए, कल स्पेशल ट्रांसमिशन है रबीउल अव्वल के हवाले से, और कल भी और परसों भी। तो कह रही हैं कैसे मिजाज हैं आपके, उम्मीद है कि मिजाज बखैर होंगे। मैं आपकी साइलेंट लिसनर हूं लेकिन आप मुझे याद भी नहीं करते। हाय मेरी प्यारी सी बहन, गिला हक बजाने सॉन्ग भी नहीं डेडिकेट करते हुए अल्लाह जी। मैंने आरजे बहुत देखा है लेकिन आप जैसा एक भी नहीं। आप घर में भी इसी तरह शरारती हो, और आज के बाद मेरा नाम जरूर याद रखिएगा। संजू को सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हम अपनी बहन और नाखवा बहन है मिरहा को जरूर याद रखेंगे। मिरहा, बस मैं अभी लिख लेता हूँ अपना नाम आपका, मेरे सामने रहेगा तो मैं याद करता रहूंगा। हैं जी जी, हैं जी। इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में क्यों राज फिरते हो सर्दियों की शामों में। आए हाय, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है यार, और ये डायलॉग भी। हैं जी। और संजू कह रही है मुझे गले तो की हड्डी और कबाब में हड्डी का पता है। गले तू की हड्डी और कबाब की हड्डी, हाँ वैसे सही कहा। ये हड्डियां जमा भी की जा सकती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं कबाब की हड्डी तो। अब फिर कम हो गई, मैं नेट पर सुन रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश। यानी मेरी बहुत ही प्यारी सी नौरीन बहना, प्यारी सी जरीन नूर अदीला को भी दुआओं का टोकरा पहुंचा दीजिएगा। पहुंचा दिए जनाब, नेट से शोका है। संजू क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, नहीं होता। खैर जी, देखते हैं अभी हम गुफरान भाई को बोलते हैं। गुफरान भाई, आपको आवाज आ रही है? आवाज कम ज्यादा हो रही है? नेट भी अच्छा, ठीक है, हो रहा है, सही है। हमने अपना एक कौवा पाल लिया, उसको ट्रेन भी कर लिया, वो जाकर जो तारों पर कौवे बैठते हैं उनको उड़ाता है। और मिर्जा साहब का एक और मैसेज आ गया है, कह रहे वाह वाह जबरदस्त भाई, क्या बात है। शुक्रिया मिर्जा साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रूह है जहां को शाजिया मंजूर का बेहतरीन लाजवाब सा सॉन्ग डेडिकेट करना है। शाजिया मंजूर से मुझे एक गाना याद आ गया है, वो संजू को समझ में नहीं आएगा, रूहे जान को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम चलाएंगे आपकी कहने पर। और भाई नौरीन तौसीफ ने दुरुस्त जवाब दिया है, और बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब दिया है, क्या बात है। वैसे नौरीन बहना एक बात तो बताओ, ये फटाफट से जो जवाब आप दे देती हैं, सच सच बताना, ये गूगल बाबा का कमाल है या माशाल्लाह से आपका मुताला बड़ा जबरदस्त है, जरा बताइएगा। क्योंकि ऐसा जबरदस्त, फौरन से फट से जवाब, सास को भी ऐसी जवाब देती थी फट से। और जनाब नहीं, मजाक कर रहा हूँ, दिल भी नहीं लीजिएगा। वैसे है ऐसा होता है, आ गए भाई मोश्क में आ गए है। कह रही अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ चाचू, सबागुल महानूर हीनागुल को बेस्ट विशेस। चाचू भी गायब है यानी के अयूब आफरीदी साहब, सबागुल भी गायब है, और महानूर भी गायब है, और हीना भी गायब। ये सब किधर है मेरे को समझ नहीं आता, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। संजू रूहे मन के लिए प्यार, और यानी कि समझ रहे ना। अभी कितने गाने जमा हो गए संजू तुम्हारे लिए, और सब कह रहे कि एक एक गाना अलग अलग से। और इत्तफाक से पहला गाना मैंने डेडिकेट कर दिया,
3: लो एलो फड़ो, सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन खैर कुछ नहीं होंदा, इस तरह जिंदगी इसी तरह गुजरती है। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर। चलो दफ्तर लिखो, चिट्ठी बनो अफसर। बचपन में वैसे छेड़ते थे, ये नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे, मैं आगे से ही जवाब देता था। और जनाब आपका और मेरा साथ है एक बजे तक ये अल्लाह उल्ला जारी हो सारी है। सवाल मैंने पूछा है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सवाल ये है कि बताएं जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में, और सबसे छोटी हड्डी कौन से मकाम पर है। सवाल का जवाब है ओ ओ जबरदस्त जरीनूर, इतना दुरुस्त जवाब। ये इन्होंने जवाब दिया सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम बता दिया उन्होंने। लेकिन आप ये भी बताएं कि जिस्म में टोटल कितनी हड्डियां होती है इंसानी जिस्म, यानी कि समझ रही है ना, समझे समझे समझे। गाने की सजा मिलेगी, कौन से गाने की सजा, हैंडसम जरूरी नहीं, बस लिखना था आपने कह दिया काफी है। ओहो मुश्क, हड्डियों के बारे में बताओ, फौरन बताओ। खैर जी अभी जाएंगे हम एक छोटी सी नन्नी मनी सी ब्रेक की जानिब।
4: FM 24/7/365 FM 24/7/365

वेलकम बैक कहेंगे सोने और फौरन से बेशतर लेकर जाएंगे आपको एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार किस्म के ट्रैक की जान है। और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जरीन नूर की जानिब से संजू को। हेलो फड़ो, क्या बात है यार, नए गाने भी बहुत अच्छे, नए गाने भी सुना करें। और आजकल के जेंजीज जो है ना, वो इस तरह के गाने पसंद करते हैं।

Welcome back, beautiful track, and I hope you like it. अच्छी बात है, अच्छी बात है. हैं जी, ते हैं जी. अच्छा जनाब, मैसेजेस आ रहे हैं आपके और उनकी जानिब बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई. मोहनलाल यूके उमरकोट से आ गया है. कहते नदीम भाई, इंसान के जिस्म में टोटल फला फला हड्डियां होती हैं. मतलब उन्होंने फिगर बताया, मैं बताऊंगा नहीं आपको. लेकिन जिस्म के जन्म के वक्त टोटल 270 हड्डियां होती हैं, जो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो आपस में जुड़कर काम होती जाती हैं. और सबसे छोटी हड्डी, ओके, प्लीज प्ले सॉन्ग. ओके, आपके लिए चलाएंगे गाना, डोंट वरी डोंट वरी. अच्छा अभी ये जो आपने बताया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता भाई कि ये हड्डियां जुड़ जाती हैं. हो सकता है ऐसा हो, इसको मैंने पढ़ा नहीं है कहीं. खैर जी, संजू कह दिए शुक्रन शहजादी जरीन, इस सॉन्ग के लिए मेरे दिल के खरीब था, बहुत खरीब था. हम हैं तुम्हारे, आए आए तुम्हारे इस सॉन्ग की को दुश्मन भी चोरी कर रहे हैं. अबे दुश्मन कौन से, दुश्मन मुल्क तो एक ही इंडिया और कोई बाइज नहीं है वो चोरी कर ले. और उन्होंने अगेन शुक्रिया अदा किया है जरीन आपका. और मुश्क, वाओ हैंडसम ऑसम सॉन्ग, हम हैं तुम्हारे. आपका हाल पूछा था, कैसे दिन गुजर रहे हैं. बस गुजर ही रहे हैं, बस दिन आजकल कैसे गुजरते हैं सबको. सुबह उठो, ऑफिस चले जाओ, दोपहर का खाना खाओ, काम करो, घर आ जाओ, थोड़ा आराम करो, खाना खाओ, फिर काम पे चले जाओ, फिर वापस आओ, फिर सो जाओ. बस यही जिंदगी है, क्या करे. हैं जी, ते हैं जी. अच्छा जी, आदत नहीं जवाब देने की, आपसे दुरुस्त चर्चा मिल जाती है, बस कर दो इतनी सुगड़. वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड. और हमारी एक और प्यारी से शहजादी बहन अदीला भी आ गई हैं. कह रही है सलाम प्यारे भाई नदीम, कैसे हैं आप. आज तो आपका अंदाज ही अलग है, आपकी रूह मन को सलाम. और एक सॉन्ग भी, संजू के कितने गाने हो गए, द मोस्ट पॉपुलर. क्या बात है संजू, एक दो तीन चार, चार गाने तो हो चुके हैं. जिन में से एक में दो चला चुका हूं, एक में अपनी जानिब से और एक जरीन की जानिब, दो रह गए. लेकिन और भी तो है ना, हैं जी, ते हैं जी. कौन सा गाना चला दू, हाँ ये अच्छा गाना है, नया गाना है भाई, अशर का गाना है और ये समी को बड़ा पसंद है वैसे. तो ये हम हमारे प्यारे से, नहीं नहीं, अलीमुद्दीन साहब को, हाँ अलीमुद्दीन साहब वाले ही चला देते हैं यार, अभी उनको ही डेडिकेट कर देते हैं. तो भाई अलीमुद्दीन साहब को एक ट्रैक उनकी जानिब से आप सबको डेडिकेट कर रहे हैं. और उसके साथ साथ गो के वो सुन नहीं रहे, अगर सुन रहे होते तो वो फौरन मैसेज आते. इरफान मेमन, मेमन फैमिली, मेमन कजन्स, सायरा मेमन, सलीम मेमन, इन सबको भी डेडिकेट करेंगे. सज्जाद अली की आवाज, एल्लो फड़ो.

वेलकम बैक। क्या भाई जबरदस्त सा ट्रैक, बहुत दिनों के बाद मैंने सुना था और उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। आ भी रहा है नहीं आ रहा यार, बताओ तो सही यार, यानी कि समझ रहे ना आप, और बस मेरी मोहब्बत ही ना समझ पाए तुम, बाकी मेरी हर गलती का बराबर हिसाब रखते हो, बहुत बदतमीज हो तुम। क्या शेर है भाई, मुश्क सही जा रही हो। और संजू क्या कहती है, कहती है अब याद से बादाम खाइएगा, भूलने की आदत अच्छी नहीं है। संजू सही कह रही है, भूल जाता हूँ क्या करूँ। माशाल्लाह से आप लोगों की मोहब्बतें प्यार इतना ज्यादा है कि क्या करूँ, कोई ना कोई फरमाइश रह जाती है। तो अरे आज हमारे सुरीले सज्जाद अली की बर्थडे भी तो है, आपकी दिलकश आवाज में सज्जाद अली का सॉन्ग। हाय हाय क्या बात है भाई, आपने ये याद दिलाया तो सज्जाद अली के हम बहुत सारे गाने जो है वो आज के शो में शामिल करेंगे। ओए होए शुक्र है आ गए भाई, भाई इनके बहुत मेहमान आते हैं भाई। अयूब आफरीदी आ गए और कह रहे जाने जिगर या हबीबी जिगर आपको, सरगोल को, मोश को, महनूर को, हिना गुल को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लाला किधर गायब हो लाला, इतना देर लगा था, आपके ऊपर पाबंदी लगाना पड़ेगा, जुर्माना लगाना पड़ेगा। अच्छा जी मैं नदीम भाई, अच्छा जी शो की बहुत तारीफ की जा रही है, फैसल साहब हैं, फैसल अरब, फैसल भाई आपने जैसे भी मैसेज लिखा है ना मैंने लुब्बे लुबाब पढ़ लिया है, गो के बहुत स्पेलिंग इधर से उधर यानी कि इधर से उधर जा रहे थे मगर फिर भी पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम मैसेज किया आपने और इसी तरह करते रहा करें मैसेज, नो प्रॉब्लम, हम ओके टिक करके पढ़ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आदत भी हो जाएगी मुझे, यानी कि समझ रहे ना। अच्छा सॉन्ग बड़े बेस्ट हैं ये भी लिखा है इन्होंने, मेरे आईडी तो बच्चों और नौ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है और आगे, लेकिन जो भी लिखा हुआ है तारीफ भी लिखी हुई है और शो भी अच्छा लग रहा है, दैट्स ग्रेट। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने। FM 24/7 365 वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और उसके साथ साथ गाने भी हम चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, फरीदा बुरहानुद्दीन मेरी प्यारी सी बहन आ गई और कह रही है आप क्या नदीम अख्तर भाई को जानते हैं, जी मेरे पड़ोस में रहते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा शो करते हैं, मेरे बराबर में पड़ोस में रहते हैं, बताइएगा हमने मिलना हो तो बताइएगा मन को बोल दूंगा। और जीती रहो मुस्कुराती रहो, ये भी बहुत ही प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी शरारतें करती हैं फरीदा बुरहानुद्दीन हमारी बहना, लेकिन कोसाई कहाँ गायब है जरा ये तो बताएं, आपके साहबजादे कहाँ गायब है आजकल, लगता है बहुत ज्यादा बैटरीज बनाने लगे हैं। और मुश्क ने कहा है जनाब मैं चाचू से नाराज हूँ, अब देर से आते हैं, चाचू बिजी हैं, चाचू जरा आप इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे। सज्जाद अली को बर्थडे विश, अपनी आवाज में सॉन्ग हो जाए सज्जाद अली का, सज्जाद अली का गाना मैं ढूंढता हूँ यार, हाँ भाई कुछ गाना ही चाहिए भाई, सज्जाद साहब तो सज्जाद साहब है ना भाई, यानी कि समझ रहे ना। चले इसी बात पर फिलहाल एक गाने की जानिब जाते हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं आप मिरहा को, हमारी प्यारी सी बहन मिरहा जो कि नाथखा है माशाल्लाह से, तो एक बड़ा जबरदस्त सा नया ट्रैक है अशर वजाहत का और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, समी का भी क्योंकि ये फेवरेट है तो समी को भी डेडिकेट करते हैं, मिरहा तुम्हारे लिए स्पेशली एल्लो फड़ो।

हमने सुना और जनाब मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर। सवाल जो मैंने आज आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये बताना है हमने। अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई लाला मुश्क और सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और एक अच्छा सा सॉन्ग लाला के नाम कर दे जावेद अख्तर साहब की आवाज में। हिना गुल नहीं करेंगे, पूछे क्यों हिना गुल कहां गायब थी पहले ये तो बताएं, गाना कर देंगे डेडिकेट मगर आप कहां थी। नौरीन बहना कहती हैं अच्छी बातें इतनी करो कि वो तुम्हारे अमाल के साथ मैच कर जाए, हाय हाय काश ऐसा हो जाए। अलमिया सबसे बड़ा ये है नौरीन बहना कि गो के हम अच्छी बातें नहीं कर रहे होते मगर हम ये समझते हैं वो अच्छी बातें हैं। इसलिए हम सही हैं, हम सेटिस्फाइड, एवरी वन इज सेटिस्फाइड। किसी से भी पूछो बोलेगा हम तो अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बात तो आज तक की नहीं, पूछ लो किसी से भी। और अच्छी बातें इंसान ऐवें ही नहीं कर लेता, इसके लिए बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, तालीम तरबियत मुताला। लेकिन आजकल तालीम और तरबियत के साथ मुताले की बजाय मुकाला हो रहा है, यानी ये समझ रहे हैं ना आप। खैर बात बड़ी अच्छी की आपने, ओके टेक, यानी कि समझ रही है ना आप। नदीम भाई रात को घर वापसी पर मसूर की दाल और चटनी आप सामने रख दी जाए, हाउ डू यू रिएक्ट। साहबजादा कह रहे यार यकीन मानो मजो अच्छी भी हो, मजा आ जाएगा मुझे, मतलब मेरी अगर बात करें, आपने मेरे बारे में पूछा तो मुझे जो भी खाना सामने रखा होता है यकीन मानो बहुत ही मजे से लेकर और खुश असलूबी के साथ खा लेता हूं। लेकिन आपको लगता है मसूर की दाल पसंद नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई, ओके वालेकुम अस्सलाम जनाब, नाम नहीं लिखा हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और संजू कहती हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मैंने पोस्ट की है वो व्हाट्सएप पे सॉरी उस पे फेसबुक पर अपने शोज के हवाले से जो कि इंशाल्लाह ताला कल और परसों होंगे, तो उस हवाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया संजू। वाओ मेरे काबिले एहतराम लाला सलामत रहें, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर आ जाते हैं, शुक्रन लाला, ये संजू कह रही है आपको। हाय हाय इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एंड अपने हाथों से कर दिया आजाद वो परिंदा जिसमें जान थी मेरी, ओए होए होए ये बेवकूफ कौन हो सकता है वैसे, क्यों किया भाई आजाद, जब पता है तुम्हारी जान उसमें है तो क्यों है आजाद गिर गया, जरा बताओ तो सही बताओ। और हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब ने शुक्रिया अदा किया है और मशहूर हैं बड़े, भाई मशहूर ना हुआ करे, मशहूर एक ही अच्छा है। वो आपसे नाराज हैं कुट्टी हैं, वो कह रहा है कि आप से मैं नदीम अख्तर भाई से बात नहीं करूंगा, वजह क्या है? सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है, टोटल हड्डियों के बारे में भी बता दें लेकिन वजह क्या है? अरे भाई शो बहुत अच्छा है पर आवाज आ रही जा रही है, हाँ सही हो जाएगी सही हो जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी। चले इसी बात पर मैं आपको एक गाने की जानिब लेके जा रहा हूं और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब हमारे प्यारे से राज दुलारे से जो है यूसुफ भाई पापोश, उनकी जानिब से उनकी बेगम को, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक, मैं तेरे नाल नाल रहना, माहिया ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि हमारे यूसुफ भाई को पसंद आया होगा। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब, जो कि आपने 3636 पर किए हुए हैं। कहां गए मैसेज, ये रहे। ओके, अमीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? स्वीट फैमिली को सलाम, और हमारी प्यारी सी बहना को मोश को सलाम। शो ऑसम बिंदास बोले तो चगास। और कहां गया मैसेज फिर? हाँ, मैसेज कहां गया? ये रहा झगास डेडिकेट सॉन्ग सलीम जावेद को या बनी को। अच्छा, इन दोनों में से कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, इन दोनों में सुनाएंगे। और एने भाई कहीं गायब नहीं थे, शो में सुनते हैं पर मैसेज कभी कभी करते हैं। हिना गुल कह रही, ये तो गलत बात है, आपको तो मैसेज करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है मेरी बहन, आप लोग सुनते रहते हो, हम आपको याद करते रहते हैं, जीती रहे, मुस्कुराती रहे। और गमों के संजोग अच्छे लगते हैं, मुसलसल रोग अच्छे लगते हैं, किसी से वादा वफा ना करूंगा मैं अब, मुझे तो बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। आए हाय हाय हाय, अमीन भाई क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब। नदीम भाई, जब आप मेरे मैसेज का जवाब दे रहे थे आपकी आवाज ही बंद हो गई थी। हाय अल्लाह जी, दोबारा पढ़ता हूँ आपका मैसेज, अभी तो आ रही है ना आवाज। हाँ, आपने मसूर की दाल के हवाले से पूछा था कि घर वापसी पर अगर आपके सामने मसूर की दाल रख दी जाए और चटनी आपके सामने रख दी जाए तो हाउ डू यू रिएक्ट, ये आपने पूछा था। तो मैंने इसका जवाब ये दिया था हमारे शहजादे कि मैं बहुत शौक से खाता, शुक्र अदा करता, कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मैं तारीफ करता, वाह क्या दाल बनाई है यार, वाह वाह वाह, तुम जैसी दाल तो कोई बना ही नहीं सकता। उसकी वजह है ये है कि उसी घर में रहना है भाई मैंने। बेगम की आद का पका हर गाना हर खाना, चाहे सब्जी है दाल है गोश्त कुछ भी, उसका तारीफ करना बहुत जरूरी है भाई जान। तुम्हारी लगता शादी नहीं हुई है, वरना ऐसे सवाल करते नहीं एक शादी जुदा इंसान से। अच्छा जी, सलाम सुनो, कैसे हैं आप? कल हम नहीं आए थे, हमें याद आई, हमारी याद तो आई होगी सलीम मेमन, हमने कल भी आपको गाना डेडिकेट किया था, आज भी किया, आप आज भी नहीं आए और आज भी हमने याद किया था आपको, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। खैर इनका चुटकुला आ गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सॉरी यानी भाई, अब गायब नहीं होंगे, हुआ करेंगे, मसरूफ ना हूं वो तो जरूरी मैसेज किया करूंगी। हिना गुल कह रही है, हिना गुल सो स्वीट मेरी बहन, मैंने तो बस ये मोहब्बत में कह दिया था, जीती रहो मुस्कुराती रहो, आप लोग आते हैं तो बाहर आ जाती है, यानी कि समझ रहे हैं ना, अब आप सबसे बाहर हैं, आप लोगों की शमूलियत जो है वो शो में बाहर है। हमारे मेहरुल्ला भाई आ गए, मौसम का हवाल भी बताओ, आज शो है आपका बहुत ही आला, आपको मैं जवाब दूंगा बाद में। फिलहाल जनाब, क्योंकि हमारे सज्जाद अली भाई हाय हाय उनकी बर्थडे है, तो उनका एक ट्रैक जो है उसकी जानिब जाएंगे हम, मुझे बड़ा जो पसंद है ना वो वाला चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले संजू की फरमाइश और मुश्क की फरमाइश, अगर बेसुरा हो जाऊं तो प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंड।

हमारी भैंसुरी आवाज सुन ली आपने, अब ओरिजिनल सज्जाद अली को सुने। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है।

वेलकम बैक कहेंगे। होपफुली आपको ये ट्रैक पसंद आया हो। सजाद अली के शुरू के गानों में से एक गाना, बहुत अच्छा। मैंने बोला थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। सजाद अली की आज बर्थडे भी है, यानी कि समझ रहे ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैसेजेस आप क्या रहे हैं कि स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और आपके मैसेजेस की जानिब ही बढ़ते हैं। ओए होए क्या बात है भाई। शौहर गहरी नींद में सो रहा था कि बीवी ने आकर जगा दिया। शौहर ने बोला क्या हुआ? बीवी ने कहा वो आप नींद की दवाई लेना भूल गए थे। मैंने कहा आपको याद दिला दूं? बहुत ही आला, मतलब सुकून से शौहर को सोने भी नहीं देना। सलीम मेमन सही हुआ आपके साथ। और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब आ गए, काफी दिनों के बाद नाम आया भाई इनका। कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? दिल से सॉरी, 27 दिन के बाद शामिल हो रहा हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से खुद को भी भूल गया हूँ। अरे इफ्तिखार भाई कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपकी मसरूफियत जो है वो पायदार किस्म की हो, बस ये दुआ है आपके लिए। और कोई मसला नहीं है, मसरूफियत सबसे पहले।

ये वो क्या बात है, तो ही हम आपको मनाएंगे ना, यानी कि समझ रहे हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर हम चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे नौरीन की जानिब से, उनकी रूहे जान को एल्लो पढ़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको। मैं लिखूं तू आ जाए, ब्यूटीफुल ट्रैक। और कोशिश आज यही है कि यार थोड़े से पॉपुलर से ट्रैक जो आपने पहले भी सुने दोबारा चला दें, कोई गाल नहीं। अच्छा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये अल्लाह गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये आपसे सवाल किया और माशाल्लाह से जितने भी जवाब आ रहे हैं तकरीबन दुरुस्त जवाब आ रहे हैं। मुश्क जी और संजीदा जी और शरारती गुफरान भाई को सलाम, और हुज़ैफा के वालिद एमपीए आसिफ मूसा के लिए भी आज कोई सॉन्ग हो जाए तो क्या बात है। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं भाई हुज़ैफा साहब सुन रहे हैं, क्या बात है हुज़ैफा भाई, ये तो अच्छी बात है, माशाल्लाह से आप हमारे रेगुलर लिसनर बनते जा रहे हैं हुज़ैफा साहब। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको भी गाना डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी। और अभी जो है वो ज्यादातर जो है चर्चा कम करेंगे और आपके मैसेजेस पढ़ते जाएंगे और नालों नाल जो है गाने चलाते रहेंगे ताकि आप लोगों की फरमाइशें पूरी हों। नदीम अख्तर भाई की आवाज में एक खास कशिश और अपनाइत है जो सुनने वालों को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। उनकी खूबसूरत आवाज दिलनशीन अंदाज गुफ्तगु पर पुरवकार शख्सियत एफएम 100 कर राज्य की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। आए हाय हाय शुक्रन शुक्रन नदीम भाई, सो स्वीट नौरीन बहना, आप लोग इतने प्यार और मोहब्बत देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। जिंदगी में कभी मैं सिंगर नहीं बन सका, आपने खामखा बना दिया है। आए हाय हमारी जिंदगी आ गई भाई, यानी जिंदगी साथ है, कैसे मिजाज है, बहुत बेस्ट शो आपकी आवाज में, सॉन्ग जबरदस्त था, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। इसी बात पर हम जाएंगे जनाब एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे, कहा गया ये रहा, हाँ जी, ये ट्रिब्यूट टू सज्जाद अली साहब है, और ये ट्रैक जो है वो आसिम अजहर ने गाया है, और ये स्पेशली ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे हिना की जानिब से लाला को, और लाला की जानिब से हम बाद में चलाएंगे, फिलहाल हिना की जानिब से, हैं जी, ते हैं जी।

ब्यूटीफुल ट्रैक जनाब, और आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। आसिम अजहर की आवाज और उसके साथ ही अमीन भाई की जानिब से ये ट्रैक डेडिकेट हो रहा है। हेलो फड़ो और ये हम समरीन को भी डेडिकेट करेंगे।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, और ये ट्रैक हमने डेडिकेट किया अमीन भाई की जानिब से, और हमारी एक और प्यारी सी लिसनर है समरीन बलोच, वो भी अक्सर इस ट्रैक की क्योंकि फरमाइश करती हैं, तो हमने नालो नाल उनको भी किया। अच्छा जी, मुझके मैसेजेस आ रहे हैं, शो बहुत अच्छा हो रहा है, दिल में लग रहा है आज कल माही सॉन्ग अच्छे प्ले कर रहे हैं। वैसे ये माही किस बस्ती में है? ये हमारी बहुत ही प्यारी सी छोटे सा बच्चा है, छोटी सी बहना है माही, और माही गायब है आजकल, एक अरसा हो गया। और अमीन भाई को झकास किस्म का सलाम, वाह जबरदस्त, क्यों आज फिरते हो? आपकी आवाज सजाद अली से बहुत मैच करती है, उनके सॉन्ग खूब गाते हैं आप, बहुत शुक्रिया मुश्का। और अदील अहमद साहब भी आ गए हैं, अदील भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा जी, मेहरुल्ला साहब कह रहे हैं सलाम नदीम भाई, कल क्या हाल है, शो इज गुड, नाइस सॉन्ग। भाई हमने भी आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। और मैं फरीदा बुरहानुद्दीन, कराची में रोजाना दोपहर को पैसों की बारिश होती है, क्या आप जानते हैं? तो दो घंटे कड़ी धूप में खड़े रह कर देख लिए आपको, 14 तबक रोशन ना हो जाए तो। आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अब क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बेतहाशा आप लोगों की फरमाइशें हैं, तो अब क्यों ना एक और ट्रैक की जानिब जाया जाए। गाने तो बड़े अच्छे अच्छे से हैं, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं क्या किया जाए। सबसे पहले तो जनाब हमने मोहनलाल की फरमाइश को पूरा करना है, क्योंकि हमारे मोहनलाल ने बहुत देर से फरमाइश की हुई थी, तो मोहनलाल साहब आपकी फरमाइश एलो फड़ो।

वेलकम बैक, मेरा लॉन्ग वाचा एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपकी आवाज सजाद अली से मिलती है, हर बार बोलती हूँ मेरी प्यारी सी बहन जरीन गुल, जीती रहो मुस्कुराती रहो। यार आप लोगों ने, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। मिर्जा शुजात साहब की कहने पे ने मैं आ लिखू तू आ जाए, क्या लाजवाब सॉन्ग गाया गया है। नदी भाई सॉन्ग की रिदम चेक करें आप जरा, जबरदस्त है यार। ब्यूटीफुल ट्रैक, मुझे यकीन है कि सबको ही पसंद है। ओए होए, ये एक और हमारी बहन आ गई, जिनसे हम नाराज है मगर उन्होंने पीली शोरी कर दिया। सॉरी नदी भाई, शो गया, मैं आ गई, बिजी थी थोड़ी सी। सबा गुल हमारी बहना, सबा गुल ये हुआ ना आपके आ गई, हमारे भी लाला ने गाना डेडिकेट किया हुआ, अगर आप नहीं सुनती तो अच्छा थोड़ी होता। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? लाला को, संजीदा को, आपी को, मुश को, मानूर को और सब सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। सबा गुल, मैंने पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले मेरे पास आ गया मैसेज। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो अब जनाब हम जा रहे हैं एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं हुज़ैफ़ा साहब को, एमपीए के साहबजादे हैं भाई वो, और हमारे सलीम मेमन साहब के बहुत अच्छे दोस्त। तो आतिफ असलम की आवाज सुनना चाहते हैं वो, तो क्यों ना सुना दी जाए। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, हुज़ैफ़ा साहब को डेडिकेट नहीं होगा, ये हमारे नवीद साहब, छोटे भाई साहब, उनको ये गाना सुनना है। और उनके साथ साथ नवीद भाई आपकी फरमाइश भी पूरी हो रही है आतिफ असलम की, और हुज़ैफ़ा साहब जो एमपीए के साहबजादे हैं और सलीम मेमन के जो दोस्त भी हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रैक है बड़ा जबरदस्त सा, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो दूरी सही जाए ना। ब्यूटीफुल ट्रैक संग बाय आतिफ असलम और उनके एल्बम से ये ट्रैक था और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है तो लिहाजा फौरन से पेशतर जो वो लिसनर्स जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया हो उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सोनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक जो कि अभी चंद मिनट के बाद बजने वाले। सवाल मैंने आज आपसे ये पूछा था कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका जवाब जो है वो आप तक पहुंचाना है जनाब। बिल्कुल इंसानी जिस्म में सबने बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया था, 206 हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में। और उसके अलावा जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान के दरमियानी हिस्से में होती है, कान की हड्डी ही कहलाती है। वैसे इसको अंग्रेजी में या उर्दू में इसका नाम जो है रकबी भी कहते हैं इसको, स्टेप्स भी कहते हैं इसको, लेकिन कान की हड्डी है जी बस यही कहा जाता है। तो इंसानी जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं इनमें सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी कहलाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब आप सबने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, ये कहती हैं हमारी नौरीन महना कि सब कहते हैं तुमने अभी देखा ही क्या है। अच्छा, ये तो पहले भी आपने भेजा था, इस पर तो चर्चा मैं कर चुका हूँ हैं जी। और आवाज में अच्छा, ये भी आपने बड़ा वो जो मेरी शख्सियत के बारे में लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अच्छा भाई, हमारी प्यारी सी बहना अदीला की फरमाइश अभी रहती है और हमारे प्यारे से लाला की फरमाइश भी रहती है, तो फौरन से बेशतर बढ़ते हैं जनाब अदीला की फरमाइश की जानिब। और अदीला ने जो है एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था और वो ट्रैक डेडिकेट करना है जनाब संजू को, तो संजू को ये ट्रैक अदीला की जानिब से एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे हाँ चाहत में। क्या क्या करूंगा भाई, नींद आएगी तो कंधे पर सर रख दूंगा। अरे वाह भाई वाह, क्या चाहत है, ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। शहरयार रेहान की आवाज में यह ट्रैक था और वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है तो लिहाजा फौरन से पेशतर इससे पहले लाला भी नाराज ना हो जाए तो लाला की जानिब से ट्रैक डेडिकेट करेंगे जनाब। और ये ट्रैक जो हम डेडिकेट कर रहे हैं सबा गोयल को, एना गोयल को, महनूर को, मुश्क को, अयूब आफरीदी की जानिब से। और वो कह रहे थे कि ये गाना आप जरूर डेडिकेट कीजिएगा, हो सकता है जीबीएन बहुत खुश हो, तो एलो पढ़ो।

0: राशा और मेरा ख्याल है कि ट्रैक अच्छा लगा होगा। थैंक्स लला सॉन्ग के लिए। अभी किसने कहा सबा गुल अपना नाम लिख दिया करो या हिना गुलार लिख दिया करो या जो भी मैसेज किया करे अपना नाम जरूर लिख दिया करे। अच्छा सुनियो इसके साथ ही अब जी
1: समी आया शो में
0: नहीं आया आज समी आया होता तो अच्छा। तुम दुल्हन की तस्वीरें देखते हो शादी कार्ड देखते हो तुम्हें समी याद आ जाता है। खैर जी वक्त बड़ा महदूद सा रह गया और मैंने आपसे इजाजत चाहनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों के साथ होंगे म्यूजिक ट्विस्टर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते सज्जाद भाई का एक सज्जाद अली का एक बहुत जबरदस्त ट्रैक है और ये ट्रैक मेरी जानिब से आप सबको भी डेडिकेट करते हैं और सज्जाद अली को भी डेडिकेट करते हैं और उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आया होगा, मतलब आता है ये ट्रैक उनका, आप सबको पसंदीदा ट्रैक है और मेरे भी दिल के बड़ा करीब है। मुझे बहुत जबरदस्त ट्रैक लगता है, ये इनकी बिल्कुल फर्स्ट एल्बम का ट्रैक है जो कि इन्होंने बाद में कोक स्टूडियो में भी गाया था। तो ये ट्रैक मेरी जानिब से आप सबके लिए और सज्जाद अली के लिए। अल्लाह हाफिज़।

ederim.

उड़ें और मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें, आगाज रखें अपना। और हम आते हैं अपने खूबसूरत ट्रैक की जानिब और शुरू करते हैं ये खूबसूरत ट्रैक आप तमाम दोस्तों के नाम करते हैं और खूबसूरत आवाज है।

जी कैसा लगा ये ट्रैक आपको? और ये अच्छा, ये थोड़ा सा पता गाना तो वैसे नॉर्मल है ये, मगर इसको रिमिक्स में किया हुआ है, मगर ये अपने वक्त का, ये शमीवारा की फिल्में दी, और शमीवारा की फिल्मों में बहुत सारी फिल्में, फिल्म का नाम था मुंडा बिगड़ा जाए, और उसके अलावा दूसरी थी उनमें सारे वो दौर, क्योंकि वो दौर भी अलग था ना, वो उस दौर में कुछ ऐसी फिल्में भी आ रही थी, बाबर शरीफ की हांगकांग के शोले, बाबर शरीफ की, और फिर बाहर की अदाकारें भी थी, उसमें सारे लोग थे, तो वो म्यूजिक, तो फिर म्यूजिक है ना भाई, क्या किया जाए, मजेदार म्यूजिक है। और जनाब इसके बाद जनाब हम आते हैं, अब हम इधर जनाब यूट्यूब पर कुछ कमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, और जनाब शुजात मिर्जा कहते हैं कमाल कमाल जबरदस्त जी ओल्ड सॉन्ग उस्तादी, इस सॉन्ग में जो फीमेल वॉइस है बहुत ही जबरदस्त लाजवाब। जनाब इसमें जो फीमेल वॉइस थी वो अदाकारा बाबर शरीफ की आवाज थी, जो गाना आपने सुना, एक लड़की, एक लड़की एक लड़का तुम जैसा ख्वाब में आता रहा, दिल न देना तुम किसी को हमको समझा था रहा, आता रहा जाता रहा हंसता रहा गाता रहा कहीं वो तुम तो नहीं। तो ये जो आवाज थी फीमेल वॉइस जो थी वो जनाब बाबर शरीफ की अपनी आवाज थी, अदाकारा बाबर शरीफ की आवाज, और दूसरी आवाज जो वहीद मुराद साहब पर पिक्चराइज की गई वो आवाज ए नैयर की थी। तो ए नैयर और बाबर शरीफ ये दोनों थे फिल्म में, वहीद मुराद और बाबर शरीफ थे, ठीक है। और अब यूं खड़ते हैं खा करते हैं, अब हम आते हैं जनाब इधर एक और खूबसूरत सा सॉन्ग हमारे पास है, और ये गाना हम आपको सुनाते हैं, ये गाना आपको सुनाएंगे जनाब अहमद ऋषि साहब की आवाज में, एक गाना मैं निकाला हुआ, बड़े दिन हो गए सोचा प्ले करूंगा, बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ।

बनौड़े यहाँ से जाना हो तो ले जाएगी तुम्हें कश्ती, बाबू हो जाना

0: Listen and watch.
1: Live entertainment show.
0: Entertainment show.
1: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: जी जनाब सानू तेरे नाल प्यार हो गया खूबसूरत डायरेक्टर ये देखिए ये तो बात है और ये उसी वक्त की बात है जब कैसेट आया करती थी सीडी थी कैसेट के बाद सीडी आई तो ये दौर तो भी दौर बस और जनाब अब इसके बाद आते हैं जरा सा हम यूट्यूब पर मौजूद हैं यूट्यूब पर आमिर इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हमारे प्यारे से दोस्त और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आमिर कैसी तबीयत आपकी आमिर तबीयत कैसी आपकी ठीक है खैरियत से हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे खुश रहें खैर आबाद रहें शाद रहें अपनी फैमिली के साथ माशाल्लाह अपना ख्याल रखा करें यार भाई काम काम काम काम वो बात हो गई दिन रात करें हम काम जब काम से थक जाए फिर और करें हम काम काम का है नाम तो बिल्कुल है मगर सेहत भी तो जरूरी है सेहत का भी ख्याल रखें और बहुत सारी केयर किया करें आप अपनी क्योंकि बात वही है कि देखें फैमिली का सरबरा पे सरबरा होता है सरबरा के साथ पे हमारे साथ हमारी फैमिली जुड़ी होती है एक हमारी जैसे फिर हमारा घर पूरा परेशान होता है और हम कभी कभी अपनी केयर नहीं कर पाते काम की वजह से काम काज होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहरहाल अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे बहुत सारी दुआएं आपके लिए उसके बाद जनाब खुरम सलीम में क्या कहते हैं जनाब शुजात मिर्जा कहते वाह वाह सर बंदर रोड से किमाड़ी जियो जी जियो ओए जियो ओए जिंदा खाके चांद सजना शालर में जवान सजना ओए जिंदा खाके जान सजना शालर में जवान सजना मैं तेरे कुर्बान सजना ओए जी हाँ जनाब जिंदा खां के जान सजना शाला रवें जवान सजना और खुरम सलीम क्या कहते हैं जनाब ब्रिलियंट और माय फेवरेट सॉन्ग खुश किता मैनू क्या बात है भाई वाह वाह क्या सॉन्ग है आपने टाइम किया टाइम का वाह वाह बहुत थैंक यू वेरी मच भाई खुरम सलीम आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया थैंक यू जजाकल्ला और अब यूं करते हैं कि आते हैं एक और गाना शामिल करते हैं और ये गाना जो है शाज खान की आवाज में ये भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना है और ये गाना मैं आप सबको डेडिकेट करता हूं आप सबको तमाम सुनने वालों को एक बात कहूं अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।